ना जापन कर तुबा तेरे रंग परंग एने ने अनगिनत ने अनेक ने तेरे करतबा नु कौन जाने तू की कर चुका है ते की करने वाला है की कर रहे हैं।

है तू न अपनता आई से तू तो आप ही ना रही। बड़ा खूबसूरत सवाल से बाणी की गहराई में एक शब्द में केड़ा खूबसूरत सवाल है। कह लगे चलू ते नदी सी ते आई सी सागर की गहराई ना अपन उथे आपा ही खत्म कर बैठी। हुण ते नदी ना रही हो सागर ही हो गई किनू नापेगी हुण किनू आखेगी सागर की यह गहराई है आप ही सागर हो गई। जदों समुद्र में चली गई हुण की उसने जानना है हुण ते सारा खजा नहीं हुंदा अपना हो गया। हुण कोई होर नदी होगी जिहड़ी ये आखेगी कि मैं सागर में जावां उहदी गहराई ना पाऊं उह किवें आखेगी उह ते आप बैठी सागर बन के उस सारे खजाने की मालकी हो गई। पर यह तां हुई है क्योंकि उहदी दिशा सागर वल सी ते उत्थे जाके सागर में समा गई। गुरु कहने लगे जेडे सलाह करने वाले सिफत सलाह रब नू वड्डा वड्डा आख उनकी सिफत सलाह करने वाले लोग ने ना उन्हां दी वक्री कोई सुरत ऐसी नहीं हुंदी कोई जांच ऐसी नहीं हुंदी जेडी रब दा म्यार झाक लै। पर जदों वड्डा वड्डा सिफत सलाह करदे करदे गुण कै गुणी समावने आ उस प्रभु दियां सिफतां करदे करदे प्रभु दे दर ते पुजदे ने जाके अपहेद हो जांदे ने फिर उस सागर तों वक्त नहीं रहिंदे।

तुम्ही सागर आहे, हे मेरे रब तुम्ही सागर आहे। ते ओ सागर जिंदे पिछे नदी तुरी गई है, जिस दी डराई विचों नदी कुछ देखना चाहती थी। उनके घर विच भी लोग कहिंदे ने बड़े खजाने ने, पर जदों मैं हे मालिक हे प्रभु

0: मन पावै सोई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहेगुरु साहिब।

0: परमात्मा भी अमुल है, उस अमुल परमात्मा नू गुरु दे शब्द दे राहे ही जाने जा सकता है। ते जिसने जाने ओ परमात्मा दी ही जय जयकार करता है, होर किसे दी नहीं। ते परमात्मा भी कृपा करके फिर उस दी संसारक मनुखा कोलों जय जयकार करवांदा है।
1: हीनो नीच करो बेनंती साच न छुटो पाई।
0: महाराज अखीर विच कहंदे ने मैं हीन मैं नीच बेनती करदा हां, हे भाई मैं सच नहीं छड़ सकदा। यानी कि सच्चा जो सदा रहने वाला परमात्मा है, मैं उसनू किसे हालत दे विच भी अपने हिरदे विचों दूर नहीं कर सकता।
1: नानक जिन कर देखिया देवाय मत साई।
0: जिस परमात्मा ने इस जगत नू पैदा किया ओही इसनू देख रहा है, देखण दा भाव है संभाल कर रहा है। ते ओही एहो जी मत दे सकता है जिस नाल उस परमात्मा नू सारियां विचों वेख्या जा सकता है, और जिस दी कृपा दे नाल मन नू अर्पण

चौथा हर के जान सतगुर सतपुरखा बिनों करो गुरपास हम कीरे कर्म सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास।

सखाई हर कीरत हमरी रह रास राउ। हर जन के वड भाग वडेरे जन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिल त्रपदास है मैल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मैल जन नानक नाम प्रगास। राग गूजरी महला पंजवा काहे रे मान चित वह उदम जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर में जंत हो पाए तांकारि जिक आग कर थरिया। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किस की धरिया। सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर काहे मन पाओ करिया। उडे उड़िया वैसे कुसा तिस पाछे बचरे सरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी।

सारणहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत बिचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चो जबड़ाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेव हैं जो सेव हैं तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्याव हैं हर त्याव हैं तुद जी से जान जुग मैं सुखवासी से मुक्त भय जन हर त्याया जी तैन टूटी जम की फासी जन निरपाओ जन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जन सेव्या जन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक कर हैं हर पूजा जी तप तप हैं जप हैं बेअंता तेरे अनेक पढ़ हैं बहुत स्मृत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरम पुर करता जी

करता सोई, तुद आपे भावे सोई भरत जी, तू आपे करह सोई, तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जनोई।

पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबियले, मान एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया राउ, ना हो जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मान

बज केवल नाम। सरंजा मिलाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह राऊ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जान्या हर राया। कहो नानक

कल आज सिंहरे आए पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सतर हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उभर आए, मरण काल का त्रास निभर आए। हु जो सदा हमारे पछा, सरी अस्तुर जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोह रखनहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो।

सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुं चरिया सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संत ने दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानाए कट कट के पट पट की जानाए जब उध करख करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब अ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं।

तांको कर्म हन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कैद सदा सेव निरंकार का चीनत न पैव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन भिन तो हे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा किहे बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंड जजेर जसे तजकीनी उत पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हव बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आदि जुगाद

सकल मलेश करुण काता, जे आस्तोज तब सरणी परे, तिनके दोष्ट दुगत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा हुए ताहे सब काला, दोष्ट रेष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे हरे हो, ताके ताप तनक मोह हरे हो।

खड़ग के तम शरण तिहारी आप हाथ दले हो बारी सर्ब ठौर मोह सहाई दोष्ट दोख ते लेह बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहें हम एक न जाने ओ सरियस पान।

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरबिट हो जिस दियां ही वड्याइया कह नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सभागै कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया पुत्रे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर दया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो ए वस्तु तजी न जाई नित न

अकाथ कथात न जानी। जा को आए सोई बिहाजो हर गुरते मन है बसेरा, निज कर महल पावो सुख सह।

चार पुत बारे ते पंजवी मां बारी छेवां आप बारिया ते सतवां बाप बारिया सत बार के कहने पाना मीठा लागे तेरा सरबंस दानिया देना कौन देऊगा तेरा शरदा देने वाले आन के सर झुक जांदा है मेरा सवा लख नाल इक लड़ा के करदा खेला बाबा गुरु गोबिंद सिंह आपे गुरचेला।

Then Rahul said, Nishastra, Kala Kala Kalos, Sadhguru Kenan School Chalve, Sati Chandrana Chalve, Zameen Chalve, Sari Grey Nishatal Kari Chari Chalve, Samu Brahman Chalve. Jin Rao Chalve, Nishat Chalve, ਸਾਲ ਕਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਘਰ ਮੁਕਾਮ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ वनस्पति ने भी पहुंचना पत्थरों ने भी पहुंचना पर इतना है जिंदगी दे इस शाह हाईवे कोई अगे है तो पीछे मन अगे है इसको फिर पीछे है पर इसको पीछे है वनस्पति सब तो अकेल देश है पत्थर यात्रा किमें आरंभ हुई दास ने इसका दो दिन ने स्वामी बड़ा सा सर्वन कराया प्रकृति ने पत्थर नो मनुख तक पहुंचाया है मनुख ने परमात्मा तक पहुंचना है जप नाल तप नाल सत्संग नाल गुरु की संगत नाल गुरु की कृपा नाल प्रकृति नहीं पुछाई नहीं पुछाई प्रकृति से छोड़ देता मनुख शायद मनुख रह जाए या मनुख शायद पशु हो जाए पीछे प्रकृति से नहीं छोड़ जाए ठीक है प्रकृति है पत्थर में सहजे सहजे उसके ऊपर के भाग में कोमल करके मिट्टी बनाया फिर वनस्पति की शक्ल में प्रकट हो सुख दुख तो निर्वेश से पत्थर पर दुखा की दुनिया आरंभ हो गई वनस्पति से

रूप न रेख न रंग किछ त्रै गुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न जिससे ओ प्रसन्न हो जान। जो वाहिगुरु जी का नाम जपदा है जो मन विच दर्शना दी इच्छा रखदा है जो दिन और रात सतगुरु की आज्ञा विच रहिंदा है जो वाहिगुरु मंत्र का अभ्यास करदा है जो वाहो वाहो वाहो वाहो वाहो वाहो विच लीन रहिंदा है वाहिगुरु की कृपा नाल उस नूं वाहिगुरु जी का दर्शन प्राप्त हो जाता है। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख वाहिगुरु जी जो सत हन नाश रहित हन सर्व व्यापक हन ए मन तू उन्हां नूं अपने मन विच रख। मानस की तू प्रीत त्याग मनुख कोलों कुछ याचना न करी अपने शरीर तो भी कुछ ना मंगी अपने शरीर नाल भी मोह न करी किसी होर शरीर नाल भी मोह न करी तिससे परे ना ही किछ होए। वाहिगुरु जी की आज्ञा विच ही सब कुछ है और वाहिगुरु जी ही सर्व कला सम्राट ने और वाहिगुरु जी ही सब कुछ दे सकते हैं। सर्व निरंतर एको सोए सब जगह ते सब समय आज सच जुगाद सच है पी सच नानक सच ओ वाहिगुरु ही निरंतर रहे हुए हैं। आपे बीना आपे दाना आप ही परमेश्वर जो हन ओ सियाने हन आप ही परमेश्वर विचारवान हन आप ही परमेश्वर गैर गंभीर गहीर सुजाना आप गहरे भी हन अति सूक्ष्म हन गंभीर गंभीर का अर्थ ये है कि वाहिगुरु जी अपने आप अपनी ही ताकत में समाये हुए हन। वाहिगुरु जी महाराज अति डूंगे हन मन तो परे हन मन की दौड़ तो परे हन अगोचर हन ज्ञान इंद्रियां तो परे हन और वाहिगुरु जी आप ही सियाने हन अखां वाले हन। जीव अपने आप विच अंधा मनिया गया है वाहिगुरु जी जे आप ही कृपा करन तां ही असी ऐसे वाहिगुरु जी नूं प्राप्त कर सकते हां। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद वाहिगुरु जी बेअंत हन वाहिगुरु जी सर्वशक्तिमान हन वाहिगुरु जी ही पालन हारे हन कृपा निधान दयाल बख्शंद वाहिगुरु जी ही दया मेर करन वाले हन वाहिगुरु जी ही दयालु कृपालु हन वाहिगुरु जी ही बख्शां दे दाते हन। साध चरी की चरनी पाऊं नानक कै मन ए अनुराऊ हजूर महाराज फरमाउंदे ने गुरु अर्जन साहिब एहा जी जिहड़े तेरे प्यारे ने जिन्हां ने तैनू प्राप्त कर लिया है जिहड़े तेरे रंग विच मस्त हन हे वाहिगुरु जी मेरे मन विच चाओ है कि मैं उन्हां प्यारियां दी सेवा विच रहां उन्हां प्यारियां दी संगत विच रहां। मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परम जा का नेत्र फोड़ किसका मंत्र न जाने होर अनुरूप मंगल सब जान कै सर्व थोक सुनिए कर तां कै राज में राज योग में योगी तप में तपीसर ग्रस्त में भोगी ध्याए ध्याए भगतान सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। मनसा पूर्ण सरना योग वाहिगुरु जी मन की कामना मन की हर इच्छा पूरी करन योगे हन और शरण गया नू अपनी शरणागति बख्शदे हन। जो कर पाया सोई होग जो कुछ वाहिगुरु जी ने जीवा नू दात बख्शी है जीव ओही वरत सकदा है। हरन भरन जा का नेत्र होर वाहिगुरु जी समर्था रखदे हन के ओ अख दे फड़कन जिन्ने समय विच ही सब कुछ बना सकदे हन ते सब कुछ मिटा सकदे हन।
ਜਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨ ਜਾਣੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਬਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਆਪ ਅਨੰਦ ਚਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਏ ਘਰ ਕਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਯੋਗ ਮੈਂ ਯੋਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੜੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜੀਆਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਯੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀ ਹੋ, ਪਰਮ ਯੋਗੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਪੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਤਪੀਸ਼ਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ। ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਤੇਰਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੇ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਤ ਨਾਹੀ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੀ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੀ ਜਾਣੀ ਪੂਤ।

झांकी लीला की नेत ना है। वाहिगुरु जी की लीला कैसी है एता ओ आप ही जानदा है। वाहिगुरु जी दे घर दी मर्यादा, वाहिगुरु जी दा अपना विचार, वाहिगुरु जी की करना चाहते हैं कोई जीव अंदाजा नहीं ला सकता ना सोच सकता है। सगल देव हारे अवगाहे, वाहिगुरु जी कितने वड्डे हैं, कितने उच्चे हैं, कितने गहरे हैं। सारे ने यतन किया है, भगता संता ने, फिर भी हे वाहिगुरु जी तुसी आप बेअंत बेअंत बेअंत ही रहे हो। पिता का जन्म के जाने पूत, जिमिक बच्चा अपने पिता का जन्म नहीं जान सकता है। सगल परोई अपने सूत, हे वाहिगुरु जी तुसी सारी सृष्टि नू अपने आप विच परोया होया है। आप ही सूत्रधार हो, आप ही सत्ताधारी हो। समत ज्ञान ध्यान जिन दे, जदों तुसी किसे नू समत बख्शदे हो, ज्ञान बख्शदे हो, सोझी बख्शदे हो, जदों सुर शब्द राही किसी दे मन नू ध्यान विच लाउंदे हो तां ही उसका ध्यान बनता है। ओ मत्ता वाला हुंदा है, ओ ज्ञान वाला हो जांदा है। जन दास नाम ध्यावै से, ओही दास ओही प्यारे जिससे तुसी आप कृपा करदे हो ओ तुहाडे नाम दा ध्यान करदा है। ते गुण मैं जां को भरम आए, माया दे तिन्न गुणा विच जिस नू पटका देंदे हो वास्तव विच जीव आप ही माया विच पटक जांदा है। ते वाहिगुरु जी जदों जीव अपने कर्मां दे अनुसार इस माया दे स्वरूप विच पटक जांदा है, तिन्ना गुणा विच अपने आप नू रख लैंदा है, तां फिर ओ जीव इन्हां तिन्ना गुणा विच पटकदा होया मरदा है, जन्मदा है, जन्मदा है, मरदा है, आवागमन विच ही रहिंदा है। ऊच नीच तिस कै स्थान, इस माया दे संसार विच कोई उच्चा हो जांदा है, कोई नीवा हो जांदा है, कोई धन वाला हो जांदा है, कोई गरीब धन तो बिना हो जांदा है, कोई मान वाला हो जांदा है, कोई अपमान वाला हुंदा है, मान तो बिना हो जांदा है। ए पातशाह सब तेरी ही चोज ने, सारिया स्थाना दे विच तू आप ही आप है। जैसा जनावे तैसा नानक जान, गुरु साहब फरमांदे ने हे वाहिगुरु जी जिवें तुसी जानकारी बख्शदे हो, जिवें बल बुद्ध बख्शदे हो जीआं नूं, वैसा ही जीव तुहानूं जान सकदा है। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेस करें इक रंग, नाना बिद कीओं विस्थार, प्रभ अविनाशी कंकार, नाना चलत करें खिन माहे, पूर्यो पूर्ण सब ठाहे, नाना मिलकर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट दिसके सब दिसके ठाओ, जप जप जीव नानक हर नाओ। नाना रूप नाना जाके रंग, हे वाहिगुरु जी आप जी दे अनेक रूप हन और अनेका ही रंगा विच आप विचरण करदे हो। नाना भेद करें एक रंग, आप अनेका तरह के रंग वरता के भी आप एक रस एक रंग विच रहिंदे हो। नाना बिद कीनो विस्तार, अनेका ही तरीकियां नाल विधियां नाल इस जगत का प्रसारा कीता है। प्रभ अविनाशी एकंकार, हे वाहिगुरु जी आप सदैव सत हो ते एक रस रहिंदे हो। नाना चलत करे खिन माहे, जिवें स्वांगी स्वांग रचदा है अनेका प्रकार, इसे तरह तुसी खिण पल विच ही अनेका तरह दे स्वांग रच देंदे हो। पूरे ओ पूर्ण सब ठाए, हर कठ विच हर ठाई आप तुसी पूर्ण ही रहिंदे हो। नाना बिद कर बनत बनाई, वाहिगुरु जी ने अनेका थावां ते अनेका तरीकियां नाल जगत की रचना कीती है। अपनी कीमत आपे पाई, अपनी रचना नूं आप ही वेख के खिड़दा है, आप ही
कीमत पा सकता है अपने घर दर की मर्यादा नू ओ आप ही जानता है। सब कर तिसके सब तिसके ठाऊं सारियां कटां भी तुसी आप ही वसदे हो सारियां दे मन आप जी दे विच ही वसदे हन आप ते ही आसरत हन जप जप जीवे नानक हर नाम गुरु साहिब जी कहंदे ने असी जीव ते आप दा नाम जप के ही जीवंदे हां सुखी हां।

क्या सत बचन साधु उपदेश। गुरु दा बचन ही सत है और गुरु दा उपदेश जिन्होंने सत करके मनिया है उन्हां नू सत गुरु राही सत दी प्राप्ति हुई है। सत ते जन जा कह रे परवेश जिन्हां सत करके मनिया है ओ जन ही सुचे हो गए हैं और इस सच दा प्रकाश उन्हां दे हिरदे विच हो गया है। सत निरत बूझे जे कोई सत नू जन वाले सदा स्थिर रहिंदे हन ओ ना रित विच हो जांदे उन्हां दा मन डोलन तो रहित हो जांदा है ते एकाग्र चित होके सावधान होके ओ सत नू बुझ लैंदे हन। नाम जपता की गत होए वाहिगुरु जी दा नाम जपिया ही उन्हां नू ए मोक्ष पद मिलिया है। आप सत किया सब सत वाहिगुरु जी आप सत ने उन्हां दा बनाया होया कीता होया जगत भी सत है। आपे जाने अपनी नित गत अपनी अवस्था नू अपने घर दर दी मर्यादा नू वाहिगुरु जी आप ही जानदे हन। जिसकी सृष्टि सो करने हार जिसका ये जगत बनाया है ओ आप ही इस नू बनाउन वाला है ते आप ही चलाउन वाला है। इस जगत नू बनाउन वास्ते कोई भी किसे नू कुछ नहीं कह सकदा ना ही ओ जगत दा मालिक इस जगत नू बनाउन वास्ते किसे नाल विचार करदा है। करते की मित ना जानी किया करतार परमेश्वर दी वाहिगुरु जी दी घर दी मर्यादा कोई जान नहीं सकता है। हे वाहिगुरु जी जिससे आप कृपा करदे हो ओहो ही आप दी मर्यादा विच रह के आप दी करनी नू जान सकता है आप दे सत स्वरूप नू पछाण सकता है।

है ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी। वाहिगुरु जी का जो सेवक हो जांदा, वाहिगुरु जी का जो दास हो जांदा, वो सदा वाहिगुरु की आज्ञा विच रहिंदा ते नाम जपदा। ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर का सेवक ही पूजा कर सकदा ते सदा सदा करदा रहिंदा। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर दा वाहिगुरु दा जो दास बन जांदा उसके मन विच ही वाहिगुरु की कृपा नाल वाहिगुरु जी दे नाम दी प्रतीति हो आउंदी। ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, वाहिगुरु दे सेवकां दी ही रहनी पवित्र हो जी। ठाकुर को सेवक जाने संग, वाहिगुरु नूं सेवकां ने दासां ने अपने अंग संग करके ही मन्या है। प्रभ का सेवक नाम के रंग, इउं वाहिगुरु दे दास वाहिगुरु दे नाम दे अभ्यासी वाहिगुरु दे नाम रंगण विच रहे हन। सेवक को प्रभ पालनहारा, अपने सेवकां अपने दासां दी प्रित पालना वाहिगुरु जी आप करदे ने। सेवक की राखे निरंकारा, सेवकां दी दासां दी लाज वाहिगुरु जी आप रखदे ने। सो सेवक जिस दया प्रभ धारे, वाहिगुरु दा सेवक ते वाहिगुरु दा दास तां ओही हो सकदा जिस ते वाहिगुरु जी आप दया मेर करन। नानक सो सेवक सास सास समारे, गुरदेव फरमाउंदे ने इहा जिहा ठाकुर दा सेवक जिहड़ा है ओ स्वास स्वास वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु ही बोलदा ते सुनदा है।

की गटमिट को न लख प्रभु के सेवक को न पहुँच प्रभु के सेवक उठते ऊचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह देश प्रगटाया अपने जन का पर्दा चाके वाहिगुरु जी अपने सेवका की लाज रखते हैं अपने सेवक की सर पर रखे लोड़ा वेले हर लोड़ अपने सेवका की वाहिगुरु जी आप ही पूरी करते हैं अपने दास को दे बड़ाई अपने दासा नू अपने सेवका नू वडियाईया भी मान समान ही आप ही बख्शदे हन अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवका नू स्वास स्वास नाम जपाउंदे हन अपने सेवक की आप पात राख अपने सेवका की लाज भी रखते ने ते उन्हां दा मान भी वधाउंदे ने ताकि गतमित कोई ना राख इस वाहिगुरु जी की करनी ते वाहिगुरु जी की मेहर जो है इसनू कोई जीव लख नहीं सकता है जान नहीं सकता है प्रभु के सेवक को ना पहुंचे वाहिगुरु जी का सेवक जिन्ना वड्डा हो जाता है वाहिगुरु का नाम जप के उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है प्रभु के सेवक उचते उचे वाहिगुरु जी दे सेवक वाहिगुरु जी का नाम जप के अपनी बिरती के कारण उचे तो उचे हो जाते हैं जो प्रभु अपनी सेवा लाया वाहिगुरु ने कृपा करके जिन्हों अपनी सेवा विच रख लिया है इसकी दया मेर कीती है नानक सो सेवक दै जिस प्रगटाया अजिहा सेवक जिसते वाहिगुरु ने अपनिया नाम दियां दातां बख्शियां ने दसां कुंटां विच जानिया गया है नीकी कीरी में कर लाख है पसम करे लश्कर कोट लाख है जिसका साथ ना काट आप ताको राख दे कर हाथ मानस जतन

अपनानक प्राव अलख विडानी निकी कीरी में कल राखे। वाहिगुरु जी इतने सर्वशक्तिमान ने कि निके तो निके जीव विच भी अपनी पूर्ण ताकत दा संचार कर सकते हैं। पसम करे लश्कर कोट लाख लखां करोड़ां रूपां विच जीआं दा बल रखण वाला भी जे कोई होवे ता वाहिगुरु जी इतने समर्थ ने कि एडे वड्डे बल रखण वाले जी नूं एक सेकंड विच भस्म कर देंदे ने। जिसका सासना काड आप ता को राखत दे कर हाथ। जिनू वाहिगुरु जी आप रखना चाहुंदे ने, आप जीवालना चाहुंदे ने, उदा फिर सास दी राखी आप ही करदे ने। ओनू अपना वृद्ध हाथ दे के अपनी आग्या विच रखी रखदे ने। मानस जतन करत बौ भांत जिसके कर्तव्य विरथे जात। ए मनुख जड़ा है ए कई तरीकियां दे आप उपराले तो करदा है पर एदा कीता होया उपराला जड़ा है ओ वाहिगुरु दी निगाह तो बिना मेर तो बिना निरअर्थ ही रहिंदा है, निष्फल ही रह जांदा है। मारे ना राखै अवर ना कोई मारन वाला ते रखन वाला। वाहिगुरु आप ही है होर किसे दे हाथ विच ए बल नहीं है। सर्ब जियां का राखा सोए सारिया जिया नू प्रित पालन वाला वाहिगुरु जी जीवन दा दाता आप ही है। काहे सोच करे रे प्राणी तू क्यों सोचा प्या करदा है। जप नानक प्रब अलख विडाणी तू वाहिगुरु दा नाम जप जो लखता तो परे है ते जो एडा उचिया कर देन वाला है। बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत ए मन तन तृपी है। नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किछ

नाम रस जो जन प्रवृत्ताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठ सोत नाम कहो नानक जन कै सद काम। बारंबार बार प्रभ जपिए इह जै सुखदाई वाहिगुरु जी दा नाम ऐ जीव ऐ मनुख तू बार बार जप दिन और रात जप स्वास स्वास जपदा रहो। ई अमृत ए मन तन तरपी है इस देही में जो मन रहिंदा है इसका स्वभाव ऐसा है कि किसी वस्तु नाले तृप्त नहीं हुंदा पर मन जदों वाहिगुरु जी का नाम जपदा है केवल वाहिगुरु जी दे नाम जपण नाली मन तृप्त हो जांदा है पहला संतोष कर लैंदा है फिर ए रज जांदा है। नाम रतन जिन गुरमुख पाया जिस गुरसिख ने गुरु की कृपा नाल इहा जिहा सुखदाई वाहिगुरु जी का नाम प्राप्त किया है जिस किस अवर नहीं दृष्ट आया उस सिख की दृष्टि विच फिर होर कुछ नहीं रहा ओ माया तो निर्लेप हो गया कि उसनों हर कण विच हर जगह हर कठ विच केवल वाहिगुरु जी ही दृष्टि गोचर होए हन। नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग इहा जे प्यारियां दी कोल नाम दा धन ही हुंदा है ते नाम दे कारण ही उना दा रूप और देही दी रंगता है। नामो सुख हर नाम का संग नाम दे कारण ही उना दे मन तन नूं सुख है ते ओ नाम दी संगत विच ही सदा रहना चाहुंदे हन। नाम रस जो जन तृप्ताने गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि इस नाम दे रस विच जिहड़ा जी तृप्त गया मन तन नामै नाम समाने ओ मन करके ते तन करके वाहिगुरु जी दे नाम विच ही समा गया है। उठत बैठत सोवत नाम इना सेवका ने वाहिगुरु जी दा नाम ही उठदियां बैठदियां चलदियां फिरदियां सौंदियां पैंदियां कर्म करदियां बैठदियां हर वेले हर जगह वाहिगुरु जी दा नाम ही जपिया है। कहो नानक जन के सद काम इना गुरमुखां दा सदा सदा नाम जपण दा ही कर्म

आठ पैर प्रभ से हजूरे कौ नानक से जनपूरे बोलो जस जीबा दिन रात ए मनुख तैनु एह जी रसना वाहिगुरु जी ने लाई ए इस रसना नाल रस लै लै के प्रेम नाल तू वाहिगुरु जी दा नाम जप दिन और रात जपदा ही रहो प्रभ अपने जन कीनी दात वाहिगुरु जी ने इस शरीर दे के तैनु अनेक बख्शिशां कीतियां ने पई प्राप्त मानुक दीहुरिया गोविंद मिरन की एह तेरी बरिया और काज तेरी किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम करें पाक भगत आत्म के चाए हे मनुख वाहिगुरु दी भगती चाओ नाल करें कि तेनु आत्म स्वरूप स्थित होने का समा प्राप्त हो जावे प्रभ अपने सो रहे समाए आत्म जान के तू फिर परमात्म विच जा समावी ए काम तो मनुख जामे विच ही कर सकदा है जो होआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने वेख वाहिगुरु जी ने ए जगत बनाया है ते वाहिगुरु जी जो चाहुंदे ने ओही कुछ करदे ने तां ते जो हो रहा है इनु वाहिगुरु दा हुक्म समझ के सत सत करके मन लवे जिसकी महिमा कौन बखानो उस वाहिगुरु दी महिमा बेअंत है एक रसना उस वाहिगुरु दी महिमा नू नहीं कह सकदी है वाहिगुरु बेअंत गुणा दे मालक हन किसका गुण कह एक न जानो एक कल्ली रसना ए जीव वाहिगुरु जी दे गुणा नू नहीं जान सकदा है उसे गुणी ताश हन एक गुण नू भी ए मनुख नहीं जान सकदा है आठ पैर प्रभ बसे हजूर है जिड़ा सेवक वाहिगुरु नाम जप के वाहिगुरु दे कोले हो गया वाहिगुरु नू निकट करके मन लिया वाहिगुरु दे अंतरमुख होके चरनी कह पिया कौ नानक से ही जन पूरे ओ वाहिगुरु जी दे नाल मिलके वाहिगुरु जी दा दर्शन पाके पूर्णता नू प्राप्त हो गया मन मेरे तिन की ओट ले मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना

अपने सेवकां ते सतगुरु जी सदी करदे रहिंदे हन। सिख के गुण दुरमत मल हिरे, गुरु अपनी कृपा नाल अपने सिखां दी अपने सेवकां दी मन मत दी जो मैल है उस नूं हिर लैंदे ने। गुर बचनी हर नाम उचर है, जदों गुरु के सिख गुरु की आग्या विच रह के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी का नाम उच्चारण करते ने, प्यार नाल जपते ने, भाई रे राम कहो चित लाए, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सतगुरु सिख के बंधन काटे, सतगुरु की कृपा नाल सिख बंधन मुक्त हो जांदा, देही दे बंधन तो मुक्त हो जांदा, विचारां दे बंधन तो मुक्त हो जांदा, चित दी मैल दे कारण जो दुख सुख है उस दे बंधन तो मुक्त हो जांदा। इउं वाहिगुरु जी दा नाम जप के सिख गुरां दी प्रसन्नता लै के मन और तन दे बंधन तो सदीव मुक्त हो जांदा है। गुर का सिख विकार ते हाटी, गुरु दी सिख्या जे ए सेवक बन के लै लवे ता इस दे मन चो विकार रूपी गलत विचार जो आउंदे ने, खोटी मत जो हुंदी ए उसका नाश हो जांदा है। सतगुर सिखो नाम धन दे, जदो सेवक नाम जपद मन और तन गुरु की अमानत समझद, इस विच खयानत नहीं करदा, वाहिगुरु नाम नू सत समझद, दिन और रात लिव लाई रखद, वाहिगुरु जी के नाम विच उदो सतगुरु की पूर्ण प्रसन्नता हुंदी ए ते सिख दे मन विच नाम का संचार हो जांदा है। मन वसे आवे नानका जे पूर्ण कृपा होए, इउं गुरु के सिखां ने नाम विच दृढ़ हो के सत प्रभु नू प्राप्त कीता है। गुर का सिख वड भागी है, इउं गुरु दा सिख जो है ओ गुरु दी कृपा नाल वाहिगुरु नाम दी दौलत मन विच लै के वड्डियां भागां वाला हो गया है। सतगुरु सिक्का हलत पलत सवारे, सतगुरु दी दया मेर नाल सिख दा नाम दी दौलत दे कारण लोक और परलोक सुखी हो गया है। नानक सतगुर सिखो जी नाल सुमारे, इस हालत विच सिख सतगुरु दा इतना प्यारा हो जांदा है कि सतगुरु उस सिख दी प्राण तक रखिया करदे हन। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को

गुर के ग्रह सेवक जो रहे, सेवक ओही है जो सतगुरु की आग्या विच रहिंदा है, सतगुरु का वचन सुनदा है, सत सत करके मनदा है, ते वाहिगुरु नाम सदा ही जपदा है। उठदिया बैठदिया वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बोलदा है, वाहिगुरु नाम सुनदा है। गुर की आग्या मन में सहै, गुरु की आग्या नू सदा ही सत करके मनना, ए सिख दा करम भी है ते सिख दा धर्म भी है। जिहड़ा सिख सतगुरु की आग्या नू सत करके मन लैंदा है, सतगुरु की मेहर हो जांदी है, उस सिख दे मन विच सत प्रगट हो जांदा है। आपस को कर कछु ना जनावे, सिख नू चाहिदा है कि ओ सब कुछ जो उन्हूं मिलिया है ओ गुरु दा समझ लवे, गुरु दी दात समझ के उसनों वर्तदा रवे, ते अपनी जनाई बिल्कुल ना करे, हाँ रहत होण दा यतन करदा रहे। हर हर नाम रदे सद त्यावे, वाहिगुरु दे नाम विच सदा ही अपनी सुरत नूं लाई रखे, सुरत शब्द योग करके ध्यान मूर्त होके रहे। मन विच सतगुर के पास, मन और तन गुरु दा करके वरत लवे, अपना करके ना वरते। जदों ये गुरु दी दात समझेगा इस मन विच प्यार आ जाएगा, एक तन नौ बर नौ रहेगा, वाहिगुरु दे नाम दे अभ्यास नाल मन खिड़िया खिड़िया रहेगा। इस सेवक के कारज रास, सेवका दे कारज इको ही हुंदे ने कि ओ सतगुरु कोलो नाम दी दौलत चाहुंदे ने, ते नाम दी दौलत नूं प्राप्त करके ओ वाहिगुरु जी दा दर्शन पा के वाहिगुरु विच लीनता हासिल कर लैंदे ने। सेवा करत होए नेकामी, सेवा करदे आं, सेवा ते संगत दी भी करी दी है, सतगुरु दी भी करी दी है, सेवा अपनी भी करी दी है। नाम जपना ए अपनी सेवा है, इहदे नाल अपना आप सोधिया जांदा, मन तन दा उधार हो जांदा, जीवन मुक्ति मिलदी, वाहिगुरु जी दा दर्शन हो जांदा। तां ते गुरु के सिखो, अपनी सेवा आप भी करो और शरीर दे बंधना तो मुक्त हो जाओ। सेवा करत होए नेकामी, जिसको उत प्राप स्वामी, जो वाहिगुरु जी का नाम जपते ने, वाहिगुरु जी का दर्शन चाहते ने, दर्शना तो छुट जो होर कुछ नहीं चाहते, इहा जे प्राणिया नू वाहिगुरु जी का ही दर्शन हुंदा है, ते वाहिगुरु जी उना दे मन विच आके समा जांदे हन। अपनी कृपा जिसे आप करे, ए ते वाहिगुरु जी आप ही कृपा करदे ने, दया मेर करदे ने, जिस सिख ते सतगुरु जी एहा जी कृपा कर देन

Ben Robert Saleh, Miss Tastale, Tar Kala Palot, Sadhu Kenan School Chandra, Sasi Chandra Chandra, Zameen Chandra, Sari Grand Inspector Tari Kari Chandra, Samu Brahman Chandra. Din Rav Chale, Nisat Chale, Taal Ka Lakh Palo, Ki Jo Sab Kuch Chal Rahe Hai, Kithe Pahunchana Hai, Kis Paase Ja Rahe Hai, Maqam Ohi Ke Liye Hai, Saariyan Da Tikana Ghar Maqam Ke Liye Kithe Jan जिथे मनुख ने पहुंचना है पशु ने भी पहुंचना है वनस्पति ने भी पहुंचना है पत्थरा ने भी पहुंचना है फर्क सिर्फ इतना है जिंदगी दे इस शाहराह दे हाईवे दे कोई अगे है तो पीछे मन अगे है इस तो फिर पीछे है पर रिश्तों पीछे में बनस सबको अपील देते हैं पत्थर यात्रा किमें आरंभ हुई दास ने इसका दोन पानों पड़ा सरवण कराया प्रकृति ने पत्थर न मनुख तक पहुंचाया है मनुख ने परमात्मा तक पहुंचना है जप नाल तप नाल सत्संग नाल गुरु की संगत नाल गुरु की कृपा नाल प्रकृति नहीं पुछाएगी नहीं पुछाएगी

विषय प्रकृति से नहीं छोड़ जाएगा। ठीक है, प्रकृति ने पत्थर में सहजे सहजे पौधे ऊपर के भाग में कोमल करके मिट्टी बनाया, फिर वनस्पति की शक्ल में प्रकट हुआ। सुख दुख पर निर्लेप थे पत्थर, पर दुखों की दुनिया आरंभ हो गई वनस्पति। बुख

इस वास्ते भोजन की भुख प्राकृतिक है, नाम की भुख प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति नहीं कहता। नहीं तो फिर सत्संग करने की लौड़ ही नहीं, जिन्हें अपने आप भोजन की भुख पैदा हो, नाम की भी पैदा हो जाए, की लौड़ है बाणी पढ़ने की, की लौड़ है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना। ध्यान सुनना, भोजन की भुख प्राकृतिक है, भजन की भुख प्राकृतिक नहीं है, पैदा करनी है। आयुर्वेद आचार्य ऐसा कहेंगे हैं, बड़ा हो गया मन या बच्चा है, भुख नहीं लगती, रोगी एदा तन रोगी हो गया, भुख का न लगना रोग की अलामत है, अलामत। जन्म तो ही मनुख मानसिक तल से रोगी होता है, उस इस्लाम की भुख नहीं है, बिल्कुल नहीं। भूख ना लगे भोजन की रोगी 104 डिग्री का ताप चढ़िया है, 36 प्रकार का भोजन बना के उसके अंदर रखे, खा कहीं भुख नहीं, क्यों ताप ने बुखार ने भुख न मार दिता है। उन्होंने आख्या जाए शरीर वास्ते कुछ ना कुछ चाहिए रखा, खंडर कहते सुद ने ताप ने जबान के जो तंतु ने जो रस मानते हैं उन्होंने भी सुन कर दिता है, रस नहीं। बुखार चढ़े मनुख को भोजन का रस नहीं, ताप चढ़े मनुख को भुख नहीं लगती। आयुर्वेद आचार्य ऐसा कहते हैं जिन्हों भोजन की भुख नहीं लगी, लगती नहीं, रोगी है, रोगी है। जिन्हें नाम की भुख नहीं, रोगी है, मानसिक तल से रोगी। जिन्हों के अंदर भोजन की भुख नहीं पैदा होती, ऐसे रोगियों की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। जिन्हों के अंदर भजन की भुख नहीं, ऐसे रोगियों नाल सारा संसार भरिया है, जो रोगी से जो सौ रोगी रोग रहे मेरा सतगुरु सब रोगी। हर उस मनुख को मानसिक तल पर रोगी समझ लेना चाहिए, बाणी की भुख नहीं, नाम की भुख नहीं, संगत के दर्शन करने की भुख नहीं, अमृत वेले की ललक नहीं, जपन की उमंग नहीं, रोगी के रोगी की पहचान। दूसरा, भोजन की गुलकी पहुंच पाइए स्वाद नहीं, तन ताप चढ़े, वाहेगुरु वाहेगुरु कर गया कोई रस चढ़े, गुरसाखी मां कीर्तन कर गया कोई रस नहीं, कीर्तन सुन गया कोई रस नहीं, बाणी जप रहे कोई रस नहीं, रोगी रोगी दिमाग तानू ताप चढ़िया हो, भोजन का स्वाद नहीं आता, मन को विकारों का ताप चढ़िया हो, किथे भजन का स्वाद। उगताए हुए लोग बैठे होंगे, सिर ढा के बैठे होंगे, कई मथे से वट पा के बैठे, कई औखे बैठे होंगे, कई मस रस नहीं, भुख नहीं, रोगी है। इस रोगी का इलाज भी रोज संगत देता, रोज कथा कीर्तन सुन, मथा किधरे भुख पैदा, तेरा ताप हल्का, पहचान की होगी ताप लग गया है, वाहेगुरु आसन का रस आ गया। ऐसे मनुख बारे कहने भावे वाहेगुरु अजय रोम रोम नहीं मसया रसना से दिवस।

अरे अष्टपदी संत के दुखन आर जा सके, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन कागजू लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन जगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का खाओ को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी गत पाहे, संत का निंदक महाअपताई, संत का निंदक खिंट करना पाई, संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित, संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्याग, संत का दोखी महा अंकारी, संत का दोखी सदा भिकारी, संत का दोखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुखते तरे, संत के दोखी को ना ही खाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दोखी अब बीच से टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुँचे, संत के दोखी को उद्यान बरमाइए, संत का दोखी जड़ पाइए, संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सांस बिना मृतक की लोथा, संत के दोखी की जड़ किछ नाहे, आपन बीज आपे ही खाए, संत के दोखी को अवर ना राखन हार, नानक संत पावे ताले उबार, संत का दोखी यूं बिललाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, जो पावक ईंधन नहीं त्रापे, संत का दोखी छुटे अकेला, जो बुआर तिल खेत माहे दुएला, संत का दोखी तरम ते रहत, संत का दोखी सब मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुरही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया, संत का दोखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए, संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दोखी की पूजा ना आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा, संत के दोख ना त्रिष्टे कोए, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत ना मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तुसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते आवो सास गिरास, सब कछवर तै किसका किया, जैसा करे तैसा को किया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जितनों कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से श्लोक, तजो सियान सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए, अष्टपदी मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन कोए कै भगवान, जिसके दिए रह अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए, मारे राखे एको आप, मानुक कै किछु नाही हाथ, तिसका हुकुम बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक बिगन न लागे कोए, पुस्तक मन में कर निरंकार, करमन मेरे सब व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेट ठाकुर का रंग, साथ संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कह हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड़ पागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करें विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी,
एक को एक एक पछाने, इत उत कियो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया। गुरु प्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। अंधन कीर्तन केवल ख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जन की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक से न लागे दुख। जिसको हर प्रभु मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं बुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किससे डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तक सब बुझिया। जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सूखम सोई अस्थूल। न किस जन्मे न किस मरे, आपन चलित आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट। आपे आप सगल में आप, अनेक जुगत रखथाप उथाप। अविनाशी नाही किस खंड, तारण तार रहे ब्रह्मंड। अलख अभेद पुरख प्रताप, आप जपाए नानक जाप। जिन प्रभु जाता सो शोभावंत, सगल संसार उदर तिनमंत। प्रभु के सेवक सगल उदारन, प्रभु के सेवक दुख विसारन। आपे मेल ले कृपाल, गुर का शब्द जप पे निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करें बड़ पागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान। जो किस करे सो प्रभु के रंग, सदा सदा बसे हर संग। सह सुबाए हो वै सो होए, करने हार पछाने सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिससे उपजे तिस माए समाए, ओए सुख निदान उन्हों बने आए। आप सो आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एक को जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु, बिरथा जान नहार। जाके सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए, जे सो प्राणी लोचे कोए। किस दिन नाही तेरे कुछ काम, गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह, प्रभ की जोत सगल कछो है। तनमंता होए क्या को गर्व, जा सब किस किसका दिया गर्व। आप सूराजे को कहावे, प्रभ की कला बिना कह धावे। जे को होए बह दातार, किस दिन हार जाने गावार। जिस गुर पर साल तू तैहो रोग, नानक सोजन सदा अरोग। ज्यो मंदर को थामे थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन। ज्यो पाखान नाव चढ़ तरे, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरे। ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुरु दर्शन देख मन होए विगास। ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिल लाइये, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये। दुख सुख प्रभ देनहार, अवर त्याग तू तिसे चितार। जो कछ करे सोई सुखमान, पूला काहे फिरे अजान। कौन वक्त आई तेरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पथ सेती कर जाहे। जिस वक्र को लैंग तू आया, राम नाम संतन कर पाया। जब मान लो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाभ खेप संत संचाल, अवर त्याग दिखिया जंजाल। तन तन कहे सब कोए, मुख उजल हर दरगे सोए। त्यो वापार विरला वापार है, नानक ता कह सब बलिहार है। चरण साध के तोय तोय पियो, अर्थ साध को अपना जियो। साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड पागी पाइये, साध संग हर कीर्तन गाइये। अनेक दिगंते साधु राखे, हर गुण गाये अमृत रस चाखे।
ओट गई संतें दर आया, सर्व सुख नानक ने पाया। निर्जर को जीवालन हार, पूखे को देवत आधार। सर्व निधान जा की दृष्टि माए, पूर्व लिखे का लेना पाए। सब किस किसका ओ करने जोग, किस दिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबसे ऊंच निर्मले करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोदन निर्मल थिया। जा के मन गुर की प्रतीत, किस जन आवे हर प्रवचीत। भगत भगत सुनिए ते लोए, जा के हृदय को होए। सच करनी सच ताकी रहत, सच हृदय सतमुख कहत। साची दृष्टि साचा आकार, सच वर्ते साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न। किसे बुझाए नानका, जिस होवे तो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख, मानुक की तू प्रीत त्याग। तिसते परे नाही किछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गही सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। साफ तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन इवन राओ। मनसा पूरन सन्ना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरम परम जा का नेत्र फोर, किसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सब जाके, सब थोक सुनिए कर पाके। राज में राज योग में जोगी, तप में तपी सरगस्त में भोगी। क्या क्या भगते सुख पाया, नानक किस पुरुखता किने अंत न पाया। जाकी लीला की मितना है, सगल देव हारे अवगाहे। पिता के जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान त्यान जिन दे, जन दास नाम त्यावे से। त्यो गुण में जाको भरमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना तेज तरह एक रंग। नाना विद की नो विस्तार, प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर्यो पूरन सब ठाए। नाना विद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कर किसके सब किसके ठाओ, जब जब जीवे नान खरनाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड।

पली सतनाम प्रभता सुखदाई विश्वास सतनाम गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कैर रह प्रवेश सत निरत बूझै जे पोए नाम जपता की गत होए आप सत की आसव सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टि सो करने हार और न बूझ कर विचार करते की मित न जाने किया नानक जो तुस पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पे बिस्माद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग रात जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जा कै संग करे संसार जन का सेवक सो वडपागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी बे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करम करावन तिन मूल पछानिया जा कह हृदय विश्वास प्रग आया तत ज्ञान तिस मन प्रगताया पैते निर्भो होए बसाना जिसते उपजा तिस माह समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको पिन ना कहना जाय बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धार है नानक सो सेवक साथ साथ समार है अपने जन का प्रदाता कह अपने सेवक की सर पर राख है अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत राख है ताकि दखनित को न लाख है प्रभ के सेवक को ना पहुँचे प्रभ के सेवक ऊंचते ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैन प्रगटाया नीकी कीरी में कल राख है पसम करे लश्कर कोट लाख है जिसका साथ न काटत आप ताको राख देकर हाथ मानस जतन करत बो पांत किसके करतब दिखे जात मारे न राख है अवर न कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विदानी बारंबार बार प्रभ जपी है की अमृत इह मन संतृप्ति है नाम रतन जिन गुरमुख पाया किस किच अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मंथन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जस जे बाजन रात प्रभ अपने जन की नींदात करह भगत आत्म कै चाये प्रभ अपने सो रह समाए जो हो आहो वत्सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मंथन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर से आनक सगली छाद तिस जन की तू सेवा लाग आमन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सब तेरा श्लोक सत पुरख जिन जानिया सत गुर तिसका नाम तिसके संग सिख उदर नानक हर दिन गाव अष्ट कदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचर

सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हाटे। सतगुरु सिख को नाम तन दे, गुरु का सिख वड़ पागी है। सतगुरु सिख का हल्स पलत सवार है, नानक सतगुरु सिख को जी नाल समार है। गुरु के गृह सेवक जो रह, गुरु की आज्ञा मन में सह। हाथ तो कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए ने कामी, किसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिसरे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ भ्रम। है स्यान पलया न जाइए, नानक ऐसा गुरु बड़ पागी पाइए। सफल दर्शन पे खच पुनीत, परफेक्ट चरण गत निर्मल रीत। पेटक संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगे गवे। सुनकर वचन करण आघाने, मन सुन दो का संपतियाने। पूरा गुर अखो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पे खे हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए। जीवा एक पुस्तक अनेक, सतपुरुष पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाए। अनेक भगत बंधन नित करें, चरण कमल हृदय सिमरें। सब बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने। क्यों हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमृत सोए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण पास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया के संग ना लेप, मन में रखे हरा एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख तैसे नासे। तपत माए ठाट वरताई, अनंत भया दुख नाथे भाई। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पौ चूका निरपौ हो बसे, सगल व्याध ममते खै नसे। जिसका साथ तिन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी। ठित पाई चूके परम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवण। निर्गुण आप सरगुण ली ओही, कलाकार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिंदु जाना ही कोए, सर्व निरंतरे को सोए। पोत पोत रविया रूप रंग, पय प्रगा साध कै संग। रच रचना अपनी कलतारी, अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन, दिखिया सगली चार। हर हर नाम कमाउना, नानक इहो धन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपाव सब मीत विसारो, चरण कमल में उधारो। कर्म कारण सो प्रभ समरत, दृढ़ कर गहो नाम हर वत। यो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आसरा को मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंठ उठ भावे, सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाँचे मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करे पली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी। अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए। सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगे परवान। मन पर दो दो हर कहनाए, दैज सावत आवे ठाए। ताको बिघन ना लागे कोए, जाके हृदय बसे हर सोए। कल पाती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पौ बिन सह पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। तित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जन फासी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। क्यों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार।
अनित पावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंशत नानक फल पाए संग ना चाल तेरे धना तू क्या लगतावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम अरबनता इनसे कहो तुम कर्म सनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कौन चुटकार अख हस्ती रथ असवारी चूठा डंप चूट पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना दो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारे चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विच जाए आप जपो अवरा नाम जपाओ सुनत कहत रहत गत पाओ सार भूत फत हर को नाओ सह सुभाय नानक गुनगाओ गुनगाव तेरी कृत मैल बिनस जाए हो मैं विखैल हो है अचिंत बसे सुखनाल साफ ग्रास सर नाम समाल छाड़ स्यान सगली मना साफ संग पावे सत धना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरगे जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जा कह मस्तक लेख एको जप एको सलाह एको चिनर एको मनाह एक के गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहे हो प्रव्याप अनेक विस्तार एक ते भये एक अराज प्राचत गए मंथन अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया परया तो शरणाय नानक की प्रभु बेनती अपनी पगती लाए हस्पदी जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो साफ साफ प्रभु में ध्यावो चरण कमल से ला गए प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभु की दृष्टि महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुवर भरे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे शरण आम सब त्याग अंतर प्रगास हम दिन लिवलाग बड़ पागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर के निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख प्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रया सब संग हजूरी जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक पंक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरह जे काल न पाने सो क्यों बिसरह जे की आ जाने सो क्यों बिसरह जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरह जे जीवन जिया सो क्यों बिसरह जे अगन में राख है गुरु प्रसाद को बिरला लाख है सो क्यों बिसरह जे बिखते का डे जन्म जन्म का टूटा गांड है गुरपुर तथ्य है बुझाया प्रभ अपना नानक जनते आया साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पाए करी है संसार बिन भगती तन हो सी छार सर्व कल्याण सुख निज नाम बूढ़त जाप पाए विश्राम सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंथन अंतर एही सुआव नेत्रों पेट दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण तोए भगत जना के मंथन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर मया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभु संत दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर कृपाल आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै को हुए पुनीत भगत पाए लावे मनहित हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान
सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमख हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाए, हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। पली सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभ देव निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सर्व गुण।

जाप अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वरण चेन ना जापत तब हर्ष शोक कौप से व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत सब केवल तनी तब बंद मुकुट को किसको गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब सिर सकत को कित ठाए जब आपे आप अपनी ज्योत धरे तब कवन निडर कवन कत डरे आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तै जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहो कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे पूछ कौन तृप्तावे करन करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीन तय वेद कटेव कहा कोचीन जब आपन आप उधार है तो सगन अप सगन कहा विचार है जय आपन ऊंच आपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अखेद अभेद समाया उहा किसे व्यापत माया आप उसको आपे आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय एक है एक एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपन आप पतियारा तै कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आप उसको आपे पहुंचा जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार पाप पुन तह पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बख्यान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक एक है जय अवगत भगत है आप जय पसरे पासार संत प्रताप बहु पास का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे अनंत जोज आपे रस को बन निर्जोग जिस पावे तिस आपन ना इलावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेसुमार अथा अगनत अतोले जो बुलावो क्यों ना

दूजा कह दिसार अष्टपदी आप तथे आप सुनने हार आते एक आप विस्तार जात पावे ता सृष्ट उपाय अपने भावने ले समाए तुम ते पिन नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जा को प्रभु जीव आप बुझाए सच नाम कोई जन पाए सो समदर्शी तत्का देता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस रात है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो विसारे तिस तज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी ती जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल है जी अनुभव पात जो जो रचियो सोत सहत्यात जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास पर मान्या करन हार नानक किस जान्या जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आसना बिकती जाए सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए किसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर परे निर्वैर अंदिन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभु परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह सुहाओ आठ पैर प्रत्येक नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पाव हलत पलत दोए लो सवार राम नाम अंतर उधार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे तिस साथ प्रीखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मंगते पहुँचाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगे निभे खेत तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बौर न आवे जाए किससे दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार ध्याए निरपौ जपै सकल पौ मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत।

के कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन के खत उदृत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनुरूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरुष प्रदान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट नावत काल अमर पय अमरा पद पाया साथ संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रगति था नाम प्रभु का लागा मीठा सगल सामग्री एक पट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नवनिध अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम सुन समाद अनहत तैनाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक किस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरण माए आकाश त्याल सर्वलोक पूरन तत्काल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम पौन पानी बह संतर माए चार कुंट बह दिते समाए तिसते पिन नहीं को ठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत में देख ससियर सूर्ण खतर में एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप अडोल न कभू डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाइये गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहे हो स्वामी ओत पोत गुरु प्रसाद ब्रह्म का नाश नानक तिन में यो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी यह रहत संत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करम करावन हार सब जाने अंतर बसे बार भी ओही नानक दर्शन दे सब मोही आप सत किया सब सत तिस तब ते सगली उत्पत तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एकंकार अनेक कला लखी न जाए जिस पावे तिस रहे मिलाए कौन निकट कौन कही है दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वर्तारा सर्व नैन आप देखनहारा सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नीमाया सब कह मद अल्प तो रहे जो किस कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तां ले समाए इसते होए सो नाही बुरा ओरे कहो किने कछ करा आप भला करतूत अतनी की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत आपन संगराच ताकि दसमित कहीं न जाए दूसर होए ताको जी पाए तिस्ता की या सब परवान गुरु प्रसाद नानक हो जान जो जाने किस सदा सुख होए आप मिलाए लहे प्रसोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस पर साथ सब जगत कर आया जन आवन का यह स्वाओ जन के संचित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक

गाओ अस्पदि। पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद। आस अनित्या गोतरंग संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो। हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो।

काल जस पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत।

जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे, प्रगटे गोपाल महंत के माथे, नानक उदरे तिन के साथे, शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पहे सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव, आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निधि खेप हमारी, प्रभ की उत्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निदान, सर्व इच्छा ताकि पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सबसे ऊंच पाए स्थान, बौर न हो वे आवन जान, हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम सांत रिद्ध नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तें सिद्ध, विद्या तप योग प्रभ ध्यान,

समदर्शी एक दृष्टेता एक फल किस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत किस जन आवे हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारे दुर्लभ देह तत्काल उदारे निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माए समानी दुख रोग

अपॉइंटमेंट का सेमेस्टर बाकी बचे जो पिछले साल इसे स्थान से 31 दिसंबर की रात सबकरण कराया थी संगत में तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे और सिर्फ 5 मिनट का समा हो बाकी फिर दास समाप्ति और सारे कृपा करो।

एक ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रदान पंचे पावेंद्र गमान पंचे सोहे हैं इंदर राजान पंचांका गुरी ध्यान।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल बख खाए, असंख निंदक सिर करें पार, नानक नीच कैं विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुध भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव संख साव अगम अगम असंख लो, असंख कहें सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग बखाण, जिन्ह लिखे तैस सिर नाए, जे फुरमाए तिव तो पाए, जेता कीता तेता नाओ, बिन नावे नाही को थाओ, कुदरत कवण कहां बिचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुध भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हथ पैर तन वे, पानी तो तै उतर सुखे, मूत बलीती कपड़ होए, दे साबून लइया उतोए, भरिए मत पापा कै संग, ओ तो पहनावे कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाहि, कर कर करना

अंतर्गात धीर संभाल नहाओ। सब गुण तेरे मनाही कोए, बिन गुण कीते भगत न होए। स्वास्थ्य आत बाणी भरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवण सवेला भगत कवण, कवण सित कवण वार। कवण सिरुति मां कवण जित आकार। वेर न पाइया पंडती जे हो लेख पुराण, वक्त न पायो कादियां जे लिखण लेख पुराण। थित वार न जोगी जाने रुत मह न कोई, जा करता असर ठीक साजे आपे जाने सोई। किब कर आखा किब साला ही, क्यों वरनी किब जाना। नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाही कीता जा का होवै, नानक जे कहो आप जाने अगै गै ना सोहै। पाताला पाताल लख आगास आगास।

अमोल गुण अमोल व्यापार अमोल व्यापारी अमोल भंडार अमोल आवह अमोल ल जाए अमोल भाई अमोला सुमाए अमोल धर्म मुल दीवान अमोल तौल अमोल प्रवान अमोल बख्शीस अमोल निशान अमोल कर्म मुल फरमान।

करुणालय है, अर्कालय है, कलखंडर है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्वोपारण है, तृत के तरण है, जग के करण है, मनमान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपाश है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विश्वं पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मांड है, कलखंड है, परते पर है, करुणा कर है, जप जप है, सप थप है, अकृत

अमृत है, नर नायक है, गण गायक है, विश्वम्बर है, कर्णालय है, नृपनायक है, सर्वायक है, अवभंजन है, अड़गंजन है, जब दापन है, जब जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत अमृत अमृत है, अकलंकृत है, सर्वकृत है, कर्ता कर है, हरदार है, परमात्मा सर्वात्मा है, आत्मवास है, जस के जस है, भुजंग प्रयात शंभ, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्रेन्द्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्रेन्द्रे नालिंग भूते, अलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आशासे, नमो बांक बांके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनूपे, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद अजय अलय अभय अभय भूवजु अनास काश, अगंज पांज लख पख अकाल दयाल लेख बेख, अनाम काम घाटाह अनाथे परमाथे अजो नियमोनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मंग परमंग गंजे लेखे, पजंग प्रजात छंद, नमासल प्रणामे समासल प्रणासे, अगंजल नामे समासल निवासे, निरकामंग बभूते समासल स्वरूपे, को कर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बभूते, सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी, क्रीमल करिंदा समासल निवासी, अजय बभूते विजय गणिमय, हरियंग हरियंग क्रीमल रहिमय, चतर्चक्र भारती चतर्चक्र भुगते, सुयम पौ शुभंग सर्वदा सर्वजुगते, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदांग संगे अपंगंग बभूते, चतर्चक्र भारती चतर्चक्र भुगते, सुयम पौ शुभंग सर्वदा सर्वजुगते,

तब प्रसाद सवैये को ओंकार सतगुरु प्रसाद पातशाह दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सुधान के देख प्रयोग कर जो जति के सूर सुधारदन शुद्ध सुधार संत समूह एकमति के सारे ही देश को देख रहे हो मत कौ न देखे प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते करति विनय करति के माते मतंग जर जर संग अनूप तंग सरंग सवारी कोट तरंग रंग से कुदत है पवन के अंक जात नारी पारी बजान के बहु बलि वजन आवश्यक न जात बिचारे एते पय तो काम पर भू बदांत को न गई पायम पदारी जीत फिर सब देश दसान को बाजत तो उल मृदंग नगारे गुंजित गुड ज्ञान के सुंदर हैं सुत हैं हजराज हजारे पूत पवैख भगवान के पुपत कौन गने नहीं जात विचारी सरी पद सरी भगवान भजे बिन अंत को अंत के दाम सुधारी तीर्थ नान दैद मदान सुसंजम ने मनेक सिखाए वेद कुरान देव कुरान जमीन जवान सुबान के देखाए पौन आर जद यार सब सब चार हजार के देखाए सरी पद सरी भगवान सरी पद सरी भगवान भजन भूपत करती बनेक न लेख शुद्ध सुभाव दुरंत दुभा सुना दुर जान दलेंगे भारी गुमान परि मन मैं करू पर्वत मखल नहा लेंगे तोर रीन मरोर मवासन मातिम दंगन मान मलेंगे सरी पद सरी भगवान कृपा बिन त्याग जहां मैदान चलेंगे वीर पार बड़े बरियार बेचारे सार की तार बछैया तोर तदेश मिलंद मवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़ी गड़ान को तोड़ नहार सुबात नहीं जगजार नवैया साहिब श्री सब गुसरनायक जाच कनेक सो एक दवैया दान देव फिरंदन साचर भूत भवेख भगवान जपेंगे जीव जिते जल में सल में पाली पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन वाट जय तुन पापन के बहु पंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिराए जग सदर सब अवलोक जपेंगे मान वेंद्र गजेंद्र नरा तब जंतर लोक राज करेंगे कोट स्नान गान अनेक सोमर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सरिपद अंत प्रदेशम बाज भरेंगे चे नार सरिपद के परसै पग ते नार फेर न दे धरेंगे कहा पयो जदू लोचन मुंद के बैठ रहे भगत ध्यान लगायो नहात फिरो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो भास के बख्यान तो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूरी तरह सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लख्यो हर वच दिशा महे काहू पिछा को शीस नवायो को बतान को पूजत है पास को मृदान को पूजन तायो पूर करया और जो सब ही जागो श्री भगवान को भेद न पायो को बतान को पूजत है पास को मृदान को पूजन तायो पूर करया और जो सब ही जागो श्री भगवान को भेद न पायो पातशाही दसवीं कवि बाज बेनती जाओ पई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए जत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो व्रत पारा हमरे दोष सब तुम काब हो आप हाथ दे मोह बचाव हो सुखी बसै मोरु परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा आनज कर दे करे सब बैरन को वास करे पूरन होई हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर जाओ सतों दे बाऊ सेवक सेक हमारे दारी है जन जन सत्र मारे मारी है आप हाथ है मुझे भरे मरण काल का त्रास न भरे हो जो सदा हमारे बचा सरिया तो जू करे हो रक्षा राख ले हम रखनहारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्ण के हंता तुम हो बुरी जतरता काल पाए ब्रह्मा भवधरा काल पाए सब जीव अवधरा काल पाए कर बिशन पर काशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो

गर भूला संतन दुख बाय दे दुखी सुख बाय साधन के सुखी एक एक की वीर भजन है कर करके बबड़ की जन है जब उदगर कर करदार पर जद अर्द तो दे अपार जब कर कर तो गव हूं तुम मैं मिलत दे दर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी भूज उचारे तुम सभी तेरे तंद्रालम जानत वेद भेद हरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नील नाद संभ ताका मूढ़ चार्त भेदा जाको भेव न पाव।

आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत बैन बैन दोहे तेती तुमरा लखा न जाय बसार केहि बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनुप स्वरूप रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज जेर सिद्ध जकीनी उत्पज खान बहोर रच दीनी कहूं फूल राजा हवा बैठा कहूं समुट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चम पव आज जुगास रूप सुम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार या सिख संगरो दोष जीते उठ वध पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तोज तब सरणी परे तिनके दोष दुख हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याई है ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा हुई ताई सब काला दुष्ट रिष्ट टर काला कृपा दृष्ट तन जाहि हरे हो ताके ताप तनक मोह हरे हो रिद सिद कर्मो सब होई दुष्ट सा सके न कोई

सुखपावे कहे नानक सच्चे साहिब ज्यों भावत वै चलावे। ए सुहिला शब्द सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया। ए तिन कै मन वसिया अजन तरों लिख आया। एक फिरे कनेरे करें गल्ला गल्ली गिने न पाया। कहे नानक शब्द सुहिला सतगुरु सुनाया। पवैत होए से जना जिनी हर त्याया। हर त्याया पवैत होए गुरमुख जिनी त्याया। पवैत माता पिता कुटुंब सहित सिउं पवैत संगत सबाइया।

सतगुर दे रास जानी हर रास मेरी मनवण जारा सतगुर दे रास जानी हर हर न जप जी ओला खटे दिहाड़ी ए धन तन मिलया जन आया पे बण कहे नानक रास मेरी मन होवा बण यारा ए रसना तू आन रस रास रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए और दिखते जितर हर रस भले न पाए हर रस पाए भले पिए हर रस बौड़ना दृष्णा लागे आए ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ।

गुर प्रसादी हर मन वसा गुरु लिख पाया, कहे नानक शरीर प्रवान हुआ, जिन सतगुर से जत लाया। ए नेत्रो मेरे हो हर तो मैं जो धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। यही वैश्व संसार तुम देख दे, हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझया जा वेखा, हर एक है हर बिन अवर न कोई, कहे नानक नेत्रांत से सतगुर मिलया दब दृष्ट होई। ए श्रवणो मेरे हो सच सुनदे नो बिठाए, सच सुनदे नो बिठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस माणी, सच लख वडाणी तां कि गद कही न जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, सच सुनदे नो बिठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया, बजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया।

0: प्रोग्राम एफएम रेडियो सीआईएसके 94.3 तो सुन रहे हो। एक प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हैं कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नू पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3876.

नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख।

जन के संग चित आवे ना आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार।

आए सफल से तेन तन जने दी मां आए सफल से परवतगार पार अगम बेअंत तू जिना पछात।

गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन माहे मिटावो सिमरो जास विशंबर एक नाम जपत अगनत अनेक।

सिमरन गर्भ न बसे, प्रभु के सिमरन दुख जम न से, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन अनदिन जागे, प्रभु के सिमरन पहु न व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिद सिद्ध नव निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसे दूजा, प्रभु के सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभु के सिमरन दुर्गह मानी, प्रभु के सिमरन हुए सुफला, प्रभु के सिमरन सुफल फला, से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ता कैला गोपाए, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उधरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किछु सुझे, प्रभु के सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरुष प्रधान, प्रभु को सिमरे से वे मुताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला, प्रभु को सिमरे से पर उपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख विहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अनंत कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हरनेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कारज पूरे, प्रभु के सिमरन कभू न चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुणवानी, प्रभु के सिमरन सहज समानी, प्रभु के सिमरन नहीं चलासन, प्रभु के सिमरन कमल बिगासन, प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन पै स्थित जति दाते, हर सिमरन नीच चहुकुंट जाते, हर सिमरन तहरी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सकल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ, शरण तुम्हारे आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय, जय महा पयान दूत जम दल, तह केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे।

सगल सिष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तरे। अनक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत अघावे। जिह मारग इह जात इकेला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा तिहाइये, नानक गुरमुख परम गत पाइये। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराही। अनक विघन जय आय संघारे, हर का नाम तत्काल उधारे। अनक जोन जन में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हो मैला मल कबू न तोवे, हर का नाम कोट पाप होवे। ऐसा नाम

नाम उहां संग तोसा जे पैंजे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा कोना सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू जय महा पहान तपत बहु काम ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम जहां त्रिखा मन तुझ आकर खै तह नानक हर हर अमृत बरखे भक्त जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उधरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नुदान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के वृत विवेक हर का नाम जन को मुकत जुगत हर के नाम जन को त्रिभुत पुहत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कपरे न पांग हर का नाम जन की वड्याई।

ना हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस दाते सुम समाद नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपे हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुगत बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात एव हर को नाम काम तेन हर हर गुणगाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत ऋदवस संत प्रताप दुर्त सब नस संत का संग बड़ भागी पाइय संत की सेवा नाम तिहाइय नाम तुलकस अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति देखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सरल त्याग बन मध्य क्रिया अनक प्रकार की बहु जतना पुनदान हो मैं बहु रतना शरीर कटाय हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौखंड पृथ्वी फिर चिर जीव महा उदास तपी सरथी वे अगन माय होमत प्राण कनक असव है वर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम असाधन निमक निमक कर श्री कटावे तो कही हूँ मैं मेल न जावे हर के नाम संसर कछ नाए नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटे गर्भ गुमान ना मन ते हुटे सोच करे दिनस अर रात मन की मल ना तन ते जात इस देह को बहु साधना करे मन से कब हूँ ना भिख्या टरे जल तो वह बहु देह अनीत शुद्ध कहा होय काचे पीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उधरे पतत बहुमूच बहुत स्याण जम का पहु व्यापे अनक जतन कर कृष्ण ना त्रापे पेख अनेक अग्न नहीं बुझे कोट उपा उधर गय नहीं सीझे छूटस नाही ऊब पयाल मोहे व्यापे माया जाल अवर कर तूत सगली जमडाने गोविंद भजन विनती नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज झुकाए चार पदार्थ जे को मांगे साधना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लो रे साध संग एहो मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साधना की सरनी परे जे जन को प्रभदस प्यासा नानकता के बल बल जासा सगल पुरुख में पुरुख प्रधान साध संगजा का मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनी सबसे ऊंचा जाका मन हो सगल की रीना हर हर नाम तीन कड़कट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेख है सगल सिख साजना सुख दुख जन सम दृष्टि।

ए तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते हो आज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक बेनहार पर छोड़ के लग है अनसुआए, नानक हु नसीझई बिन नावे पत जाए। अष्टपदी दस वस्तुले पाछे पावे, एक वस्त कारण बिखोट गवावे, एक पीना दे दस्ती हिरले, तो मूड़ा कहो का करे, जिस ठाकुर सो नाही चारा, ताकू की जय सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुखता हूँ मन उठा, जिस दिन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अग्नस्ता हो अपनी रे रास, खात पीत वरत अनंत उलास, अपनी अमान कछु बाहुर साहु ले, अज्ञानी मन रोष करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे, जिसकी वस्तिस आज्ञा रखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उस पे चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अनक पांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरख की छाया स्यों रंग लावे, ओह बिन से ओह मन पछतावे, ज्योति से सोचा लनहार, लपट रहे होते अंध अंधार, बटाऊ स्यों जो लावे नहीं, ताकू हाथ न आवे के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राज जोवन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता, मिथ्या त्रोमो अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत सात की शरण, नानक जब जब जी वह हर के चरण, मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने है, मिथ्या हस्त पर द्रव को हिरे, मिथ्या नेत्र पेखत प्रत्रिय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तहावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बुझे मिथ्या सब पहे, सफल दे नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मूर्ख आवता के दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों के पन के निरारत दाम, तन तन ते जन जेह कट बस्यो हर नाओ, नानक ता के बल बल जाओ, रहत अवर खुश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत, जानन हार प्रभु प्रवीण, बाहर पेख न काहो पीन, अवर उपदेश अपना करे, आवत जावत जन में मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार, तिस तिसी तरह संसार, जो तुम पाने पिन प्रभ जाता, नानक उंजन चरण प्राता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप पहमाने, आप है आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा, उपाव स्यान सगल ते रहत, सब कस जान आत्म की रहत, जिस पावे तिसले लड़ लाए, थान थनंतर रह समाए, सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरि। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिनस जाय अहमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परमगत पावे, जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे तिहाय सदा मन अंदर, जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना, जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा तिहाइये तिहावन जोग, जे प्रसाद पाठ पटंबर अढ़ावे, तिसे त्याग कथ अवर लुभावे, जे प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहर ता का जस गावि जय, जे प्रसाद तुझ सब को माने, मुक्ता को जस रसन बखाने, जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पावहम, प्रभ जी जपत दर गह मान पावे, नानक पत से ती कर जावे, जे प्रसाद आरोग कंचन देही, देवलाओ तिस राम स्नेही, जे प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत, जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मर सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके, जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे, मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे, जे प्रसाद पाए दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे, जे प्रसाद आप भुवन पहरी जय, मन तिस सिमरत को आलस की जय, जे प्रसाद असु हस्त असवारी, मन तिस प्रभ को कब हूँ ना बिसारी, जे प्रसाद बाग में लख तना, राख प्रोय प्रभ अपने मना, जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सब तिसे तिहाई, तिसे तिहाई जो एक अलख है, इहा उहा नानक तेरी रख है, जे प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप,
जे प्रसाद तेरी नहीं की जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै जे प्रसाद सुने करण नाद जे प्रसाद पेखै बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चलै जे प्रसाद संपूर्ण फलै जे प्रसाद परम गत पावै है जे प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल ना मनहु विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर तू ता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपै जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभु तेरी माया आपो कछु ना किन्हु लया जित जित लावो तित लगे हरनाथ नानक इनके कछु ना हाथ सलोक अगम अगाध पावन सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुनमीता नानक बिनवंता सात दिना की अचर्ज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उज्जल होत साध संग मल सग लीक होत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभु नेरा साध संग सब होत निबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा पर न कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा पर खुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पहुंचा साध संग होए सबकी रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग ना कछु सावे साध संग अस्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनीत साध संग किस क्यों ना ही बैर साध के संग ना बीगा पैर साध के संग ना ही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग ना ही हो ताप साध के संग सजे सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साध के संग ना कभू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस अगोचर लहे साधु के संग अजर सह साध के संग बस स्थान ऊंचे साधु के संग महल पहुँचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु के कुर्बान साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुटम निस्तारे साधु के संग सो तन पावे जिस संते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा साधु के संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कष्टकाल दर्शन भेटत होत निहाल साध के संग कलुख हथहरै साध के संग नरक प्रहरै साध के संग इहां उहां सोहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छे सो फल पावे साध के संग ना बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उधरे साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग ना मनते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लग गए प्रभु मीठा साधु के संग काट कट देखा साध संग पहे आज्ञाकारी साध संगत पही हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा वेदना जान है जेता सुने तेता बखियन है साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा वे अंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा मूच से मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख एक कसबिन कोए नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर्य सब को सोख ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे कुल पवान ब्रह्म ज्ञानी के तीरज एक जो वसदा को खोद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का ए गुनाओ नानक के उपाव का सहज सुपाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तरु ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सबसे नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया
ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस।

है सगल संसार। ब्रह्मज्ञानी के एक रंग, ब्रह्मज्ञानी के बस है प्रसंग। ब्रह्मज्ञानी के नाम धार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अनुभूत त्यागत। ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के कह सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्मज्ञानी एक संहिता। ब्रह्मज्ञानी के होय अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़।

ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने।

विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक, उतारे जो अंतरनाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ अवर सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या ना ही रस न परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, प्रक्रिया रूप न पेख नेत्र, साध की टहल संसंग हेत, करना सुने काहु की निंदा, सब ते जान आपस को मंदा, गुरु प्रसाद विख्या पर हर, मन की वासना मन ते तरह, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विसन की माया ते होए कहन, कर्म करत हो वह नहीं कर्म, इस वैष्णो का निर्मल धर्म, काउ फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवर नाम जपावे, नानक हो वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिन से सगला परम, कर पूज्य सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवे, तिस भगवती कीमत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पय बिसन परीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन न आवे, वेद पुराण सिमरत बूझे मूल, सूखम में जाने अस्थूल, चहो वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा अरेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहो वर्णा में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतारे, पस प्रेत मुग्ध पात्र को तारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहो जुगत किते न पाइये धर्म, नानक किस मिले जिस लिखया तुर करम, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नगरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोझे परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हर तैसा उस सोग, सदा अनंत है ना ही वियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी दिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ता ऐसा जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुकत, पार ब्रह्म कह सगले ठाओ, जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ, आपे करण करावन जोग, प्रभ पावे सोई फुन होग, पसरियो आप होए अनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल, सलोक पुस्तक कर है अनेक जन, अंत ना पारावार, नानक रचना प्रभ रचि, बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पहे तीर्थ वासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट कपि सर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब काब विचार है, कई कोट नौतन नाम त्यावे, नानक करते का अंत न पाव है, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपल आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को ही रह, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी वैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देवदानव इंद्र सिर छत्र, सगल सामग्री अपने सूत तार है, नानक जिस जिस भावे तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्थास्त्र, कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजी वह, कई कोट गिरी मेर सुवरंथी वह, कई कोट जग किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सबते ने रह सब होते दूर, नानक आप अलिप्त रह भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्म जीव मरह, कई कोट बहुजो निधिर, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पहना तह तह राखे,
नानक सब किज प्रभु के हाथे। कई कोट पहे वैरागी, राम नाम संग तिन दिवलागी। कई कोट प्रभु को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रभु प्यास, तिन को मिलियो प्रभु अविनाश। कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको होय आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन। कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड। कई कोट होय अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार। कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एकंकार। कई कोट कीने वो भांत, प्रभ ते होय प्रभु माहि समात। ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोय। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तत के बेते, सदा निहार एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीवह, अमर पहे सद सद ही जीवह। कई कोट नाम गुण गावह, आत्म रस सुख सहज समावह। अपने जन को सा सा समारे, नानक ओए परमेश्वर के।

का दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शीस ता का लेखा न गने जगदीश जीव पिंड सब तिसकी रास घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करण कराम सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो ज्योतिष पावे सोई पंतियो कबहू ऊंच नीच में बसे कबहू सोग हर खरंग हसे कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश तयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू नित करे बहु पहात कबहू सोय रहे दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की होत रवाल कबहू होए वह बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा कबहू अब कीरत में आवे कबहू पला पला कहावे ज्यो प्रभु राखे तिव ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मोन तारी लावे ध्यान कबहू तट तीरति स्नान कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन भरमे भरमिया नाना रूप ज्यो स्वागी दिखावे ज्यो प्रभावे तिवे नचावे।

मंतन नाम रते एक रंग सदा बसे पावन के संग ज्यो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गौन पाए विश्राम नानक प्रभ के सद कुर्बान सलोक सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतरराज अभिमान सोन रख पाती होवत स्वान जो जान मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को क्रमवंत कहावे जन्म मरे बहु जोन परमावे तन पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आगे।

जाय पसमंत किसा नबद अहब अहंकारी करम राय तिस्कर खुआरी गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दुर्गह प्रवान कोट करम करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दुर्गह को कैसे गवे आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकट न आवे सब की रेंजा का मन होए कहो नानक ता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझसे कुछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब यह जाने मैं कुछ करता तब

प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लख को उठतावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरते सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए।

ਆਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰ ਜਾ ਘਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮਹਿ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਹਸੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਤਰੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਂਗ ਜੋ ਲਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਬ ਜੋਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਕਰਮਾਏ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨਚਾਏ ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਓਏ ਕੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿੰਚਿਕਟ ਨ ਪਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖਿਆਰ ਦੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਵ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦੋਖ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਪੀ ਹੋਏ ਮੋਖ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਅਪਵਿੱਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਮਿਥ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਡਾਨ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਡਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਨਾ ਹਿਠਾਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅਧ ਬੀਜ ਤੇ ਟੁੱਟੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਲੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉਜੜ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਤਾ ਜਿਉ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਅਵਨ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਉਬਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉਂ ਬਿਨ ਲਾਏ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਪੋਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਇਧਨ ਨਹੀਂ ਧਾਪੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁਟੈ ਕੇਲਾ ਜਿਉ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਦੁਹੇਲਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰੀ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਿਆ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵਾਈਐ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁਜੈ ਨਿਰਾਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਨਿਰਾਸਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਕੋਏ ਜੈਸਾ ਪਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਪਿਆਓ ਸਾਸ ਜਰਾਸ ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤੇ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਜੈ ਸਾਕਰੇ ਤੈਸੋ ਕੋ ਥੀਆ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬੜ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ ਤਜੋ ਸਿਆ ਨਫਸੁਰ ਜਨ ਹੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਕੋ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸਕੇ ਦਿਆ ਰਹਿ ਅਘਾਏ ਬਹੁ ਨਾ ਤਿਸ ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ ਮਾਨੁਖੇ ਕਿਸ ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰਖਕੰਠ ਪਰੋਏ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੇ ਕੋਏ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਹਿ ਜੀਓ ਨੈਨੋ ਪੇਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਸੰਗ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਠੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ ਬੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ ਇਕ ਉਤਕੀ ਓ ਸੋ ਜੀ ਜਾਣੈ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਨ ਆਪ ਸੁਝੈ ਜਿਸਕੀ ਜਾਣੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਸਰਵ ਰੋਗ ਤੇ ਉਹ ਅਰਜਨ ਰਹਿਤ ਅੰਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਨ ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸਕੀ ਕਟੀਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ ਜਿਸਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੰਚਿਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੂੰ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोधत सोधत सोधत सिझिया, गुरप्रसाद सब सब बुझिया। जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सूखम सो स्थूल। न किस जन्म न किस मरे, आपन चलित आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट। आपे आप सगल में आप, अनक जुगत रस्थाप उथाप। अविनाशी नाही किस खंड, तारण तार रहो ब्रह्मंड। अलख उपेव उपुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सो भावंत, सगल संसार उधर तिनमंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण। आपे मेल रहे कृपाल, गुरु का शब्द जप है निहाल। उनकी सेवा सोए लागे, जिसमे कृपा करे बड़ भागे। नाम जपत पावे विश्राम, नानक किन प्रभ को उत्तम करमान। जो कुछ करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसे हर संग। सहज सुभाए होए सो होए, करने हार पछाने सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिस माए समाए, ओए सुख निदान उन्हों बनाए। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जानन हार। जा कै सिमरन उधरी है, नानक किस बलहार। अष्टपदी टूटी गानन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल। सर्व की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए, जे सो प्राणी लोचे कोई। किस बिन नाही तेरे किस काम, गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह, प्रभ की जोत सगल कट सो है। तनवंता होए क्या को गर्वे, जहाँ सब किस किसका दी आदर वे। अच्छु राजे को कहावे, प्रभ की कला बिना कहतावे। देखो हुए बह दातार, किस दिन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सो जन सदा अरोग। जो मंदिर को थामे थमन, त्यों गुरु का शोध मने अस्मन। जो पाखाण नाव चढ़तरे, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरे। जियो अंधकार दीप प्रगास, गुरदर्शन देख मन होए विगास। जियो महा उद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बात छो तूर, नानक की हर लो चापूर। मन मूर्ख काहे बिल लाइये, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये। दुख सुख प्रभ देवनहार, और त्याग तू दिसे चितार। जो कुछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरे अजान। कौन बस आई तेरे संग, लपट रहे रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत्ते सी कर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अभिमान ले हो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाद खेव संत है संचाल, और त्याग बिखिया जंजाल। तन तन कह सब कोए, मुख उज्जल हर दरगह सोए। एह वापार बिरला वापार है, नानक ताके सद बलहार। चरण साध के तोहे तोहे पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की तोहर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वट भागी पाइये, साध संग हर कीर्तन गाइये। अनक विघन थे साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे। ओट गही संत दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवा लनहार, पूखे को देवत आधार। सर्व निधान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाए। सब किस किसका ओ करने जोर, किस बिंदु सर हो आना होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबसे ऊंच निर्मल ए करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। जहाँ के मन गुर की प्रतीत, तिह जन आवे हर प्रवचित। भगत भगत सुनिए तेह लोए, जहाँ के हृदय एक होए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्त साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। सलोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रेह गुण ते प्रभ पिन। इसे बुझाए नानका, जिस हो वै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख, मानुक की तू प्रीत त्याग। तिस्ते प्रय नाही किछ कोय, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। सार तेरे की चरनी पाओ, नानक कै मन एहो अनुराओ। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरण परम जाका नेत्र खोर, किसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जाके, सर्वथोक सुनिए करता के।
राज में राज योग में जोगी, तप में तपी सरग्रह सत में भोगी, क्या कह भगते सुख पाया, नानक किस पुरख का किने अंत न पाया, जा की लीला की नित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम त्य वैसे, तेह गुण में जाको परमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, ऊंच नीच स्थित के स्थान, जैसा जना वे तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करे इक रंग, नाना विद की नो विस्तार, प्रभ अवनाशी एक अंकार, नाना चलित करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए, नाना विद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीव नानक हरनाओ, नाम के तहरे सगले जंत, नाम के तहरे खंड ब्रह्मंड, नाम के तहरे सिमरत वेद पुराण, नाम के तहरे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तहरे आगास पाताल, नाम के तहरे सगल आकार, नाम के तहरे पुरिया सब पवन, नाम के संग उधरे सुन सरवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जा का सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सतपुरख सब माहे समानी, सत्कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत्करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सफली, सतनाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत्ते जन जाके हृदय प्रवेश, सत नित बुझे जे कोय, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट तो करने हार, और न बुझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष पावे सोवर किया, विस्मन विषम कहे विस्माद, जिन बुझ जा तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग रात जन रहे, गुर के वचन पदार्थ लहे, कोई दाते दुख काटन हार, जाके संग करे संसार, जिनका सेवक सोवड़ पागी, जिनके संग एक लिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुर प्रसाद नानक फल पावे, सलोक आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच, अष्टपदी चरण सत सत प्रसन हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत देखन हार, नाम सत सत त्यावन हार, आप सत सत सप्तारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रवक्ता, सुरत सत सत जसुमता, बुजन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सतरूप हृदय जिन मानया, करम करावन तिन मूल पछानया, जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया, सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पैते निरपो हो बसाना, जिसते उपजया तिस माहे समाना, बस्त माहे ले बस्त गड़ाई, ताको पहनना कहना जाई, बुझे बुझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु तारे, नानक सो सेवक सास सास समारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की तरफ राखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राखे, ताकि गत मित कोई न लाखे, प्रभु के सेवक को न पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीची कीरी में कर राखे, पसम करे लस्कर कोट लाखे, जिसका साथ न काढ़त आप, ताको राखत देकर हाथ, मानस जतन करत बो पहात, इसके कर

बार बार सब जपिए पी अमृत एहो मंथन त्रपिए नाम रतन जिन गुरु मुख पाया किस किस अवर ना ही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन ना मह नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहु नानक जन कैसद काम बोलो जस जे बा दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात रह भगत आत्म कह चाय प्रभ अपने सो रह है समाए जो हो आहो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने इसकी महिमा कौन बखानो इसका गुण कह एक न जानो आठ पहर प्रभ बसे हजूरे कहु नानक से जन पूरे मन मेरे चिन की ओट लहे मन तन अपना तिन जन दे जिन जिन अपना प्रभु पछाता सो जन सब थोका दाता किसकी शरण सब सुख पावे जिसके दर्श सब पाप मिटावे अवर स्यान सगले छाड़ तिजन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिजन के पूज हो सद पैरा सलोक सतपुरुष जिन जाने सतपुरुष किसका नाओ तिसके संग सिख उधरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल सेवक को गुरु सदा दयाल सिख की गुरु दुर्मत मल हिरे गुरु वचनी हर नाम उचरे सतगुरु सिख के बंधन काटे गुरु का सिख विकार से हटे सतगुरु सिख को नाम तन दे गुरु का सिख वड पागी है सतगुरु सिख का हलत पलत सवारे नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे गुरु के गृह सेवक जो रहे गुरु की आज्ञा मन में सह आपस को कर कुछ न जनावे हर हर नाम हृदय सद त्यावे मन बेचे सतगुरु के पास इस सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बीसवे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हरनाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग दाता ब्रह्म में जन जन में है पार ब्रह्म एक है आप नहीं कस परम सह स्यान पलया न जाइये नानक ऐसा गुरु वड भागी पाइये सबल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गय गवे सुनकर वचन करन आघाने मन संतोष आत्म पतिया ने पूरा गुरु अख्यो जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तितलय मिलाए जेवा एक उस्तत अनेक सतपुरुष पूर्ण विवेक काहू बोलना पहुँचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वय सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सदवलहारी सतगुरु अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने यो हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरुष का ना ही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश से वो को दे मोह माया के संग ना ले मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तहनासे सप्तमाए ठान वर्ताई आनंद पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे और चुका निर्प हो बसे सगल व्याध मन से खेन से जिसका साथ इन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी सित पाई चुके परम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तहर जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रवया रूप रंग पहे प्रगास साथ के संग रच रचना अपनी कल तहारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली चार हर हर नाम कमावना नानक एहो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत विसारो चरण कमल रिद में उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो हो नाम हरवथ एहो तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पजहर की शरणी अनक उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखदलाए सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगह प्रमाण
मन प्रभो दोहर के नाए दय दिस आवत आवैठाए आपको विघन न लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठांडा हरनाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन से पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव केवल तन जन्म का होय उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनत उपाव न छूटन हारे सिमरत सा सत बेत विचारे हर की भगत करो मन ला

आप जपहो अवरा नाम जपावहो सुनत कहत रहत गत पावहो सार पूत सत हर को नाओ सहज सुपाय नान गुन गाओ गुन गावत तेरी उतरस मैल बिनह जाए हो मैं विख फैल होहे अचंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल छाड़ स्यानप सगली मना साध संग पावे सच तना हर पुंजी संच करो व्यवहार इहा सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहु नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साला है एक सिमर एको मन आहे एक अस्ते गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहे प्रव्याप अनक विस्तार एक ते भय एक अराध परा छत गए मन तन अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक इक जाता सलोक फिरत

जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम। साधना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धापुर। सदा सदा प्रभु के गुण गाओ खास खास प्रभु में तिहावो। चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एक आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाव साथ के संग। परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग। बड़भागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभु होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुकत जन भया जन्म मरण दुख परम गया। इच पुण्य श्रद्धा सपूरी रव रहा सत्संग हजूरी। जिसका साथ लिया मिलाए नानक भगति नाम समाये। सो क्यों बिसरे जे काल न पहने सो क्यों बिसरे जे किया जाने। सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे। सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़े जन

आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवर है नाम जपावो, भगत पाए त्रिय संसार, बिन भक्ति तन हो सिछार, सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का हो अतनास, नानक नाम जपो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मंतन अंतर एहि सुआओ, नेत्रो पेह दृष्ट सुख होए, मन विषय साध चरंत होए, भगत जना के मंतन रंग, बिरला को उपावे संग, एक बस विजय करमाया, गुरु प्रसाद नाम जपलाया, ताकि उपमा कहीं न जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभु बख्शन दीन दयाल, भगत वचल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटाकर्त प्रतपाल, आदि पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होय पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान, सर्व वैकुंठ मुकुट मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनक राज भोग बढ़े आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का पर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, पली सो करनी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास, श्लोक

श्री अमृत जाके दृष्ट दर्शन ते खत उदरत श्रिष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी प्रुप प्रधान जिस मन बसे सो होत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पहे अमरा पद पाया साल संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत कहते नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु जीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल सामग्री एक स्कमा है अनक रंग नाना दिष्ठाए नौ निज अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम सुन समाद अनहत तैनाद कह न जाय अचर्ज विस्माद तिन देखा जिस आप दिखाए नानक तिजन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कटकट प्याप रहा भगवंत करण माहे आकाश दयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा क्रम पौन पाणी वै संतर माहे चार कुंट दह दिशे समाहे तिस्ते पहन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मह देख सत्य सूर नक्षत्र में एक वाणी प्रभु की सबको बोले आप अडो ना कब हूँ डोले सर्व कला कर खेल है खेल मोल न पाइये गुण है अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहो स्वामी ओत कोत गुरु प्रसाद ब्रह्म का नाश नानक किन में इहो विसात संतजना का पेखन सब ब्रह्म संतजना के हृदय सब धर्म संतजना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संरचन जिन जाता तिसकी ए रहत सत वचन साधु सब कहत जो जो होए सो ही सुख माने करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पिहो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत किस प्रभ ते सगली उत्पत किस पावे ता करे विस्तार किस पावे ता एक अंकार अनकला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वर्तारा सर्वनैन आपे खनहारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नीम आया सब कह मद अलिप्त हो रहे जो किस कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जहाँ पावे ता ले समाए इससे हो सो नाही बुरा उरे कहो हो किने कस करा आप भला कर तूत अपनी की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत आपन संग्राच ताकि गत में कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिस दा सुख होए आप मिलाए ले प्रभु सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन का एह सुआओ जन कै संचित आवे नाओ आप मुक्त

0: नानक पूरा पाया। पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित्यागो तरंग, संतना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेंती करो, साध संग अगन सागर करो, हर तन के फल ले भंडार, नानक गुरु पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद, नरक निवार उधारो जीवो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का एह आधार, उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत होत उधार, आप करे लोक है निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वा जय, सुन सुन अनंत करे प्रभु गा जय, प्रगटे गोपाल महंत के माथे, नानक उधरे तिन के साथे, शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए, मिट गए वैर पहे सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न पहे गुरुदेव, पूरन होए सेव की सेव, आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभु तारी, नानक निभि खेप हमारी, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निधान, सर्व इच्छा ता की पूरन होए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सब ते ऊंच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रिद नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्वत सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सबके मद सगलते उदास, सुंदर चतर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, एह फल तिह जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम वचन मन सुने, एह फल तिह जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम वचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद पहत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जाके मस्तक क्रम प्रभु पाए, साध क्रम नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, ते जन आवे हर प्रवचीत, जन्म मरणता का दुख निवारै, दुर्लभ देह तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृतता की वाणी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन सह पह परम, साध नाम निर्मलता के करम, सब ते उच्चता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुखमनी, सब ते उच्चता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: केलबो दी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसीं इह प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तों सुन रहे हो। यह प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तों प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसीं सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह वी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

सुनंती बोध हो गया, सुन दई। कृष्ण ने सुखदेव जी को बह के सुनिया, राजा जनक ने अष्टावक्र गुरुदेव जी को बह के सुनिया। धन धन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमर ने पापी तरे ने अनेक पापी तर गए, मन के पाप क्यों नहीं खत्म हो गए। कोट अपराध सात संग मिटे, कल दे कोल बैठ दे जड़ी वो साधना दसनगे, सिमरन की जुक्ति दसनगे, अपने स्वरूप की लखता कराएंगे। विश्राम दे रही थी बल्ब दे प्रकाश में, कोई प्रकाश सामने प्रतीत होया, उन्हें दिखाया सिर्फ तुहानू मन शब्द मरे प्रतीत होए। ज्ञान तो बाद भी मन रहिंदा है पर प्रतीत हुंदा है, भरम नहीं पैंदा। साउपादक भरम ते निरुपादक भरम, दो तरह के भरम हुंदे है। अगो भरम के पांच रूप ने, भरम के फिर पांच रूपां के अंदर फिर भेद ने, जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जड़ जड़ का भेद, भेद ने। इसलिए भेद ना जानो मानुख दया, मनुखा ने दया ने असी एवं भेद बनाई बैठे हैं। एक अखंड दे विच खंडन करन, खंडित वृत्ति करनी सब तो वड्डा पाप है। इसलिए अखंड पाठ किया जाता है, अखंड जाप किया जाता है, अखंड वृत्ति की महानता है। साड़ी वृत्ति टुटती है और गुरसिख की वृत्ति टुटती नहीं। दत्तियां लोहां से गुरु अर्जन देव जी के काल जिन्हों का असी गुरपुरब मनाया, मथुरा भट्ट जी कहते हैं

0: केरबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

0: अनोखिया शिकारी आवे
1: जिते मां जवानिया जिते मां जवानिया अनोखिया शिकारी आवे

गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह जिन्हां दे बाबत भाई साहब भाई गुरदास जी दूसरे गुरदास जी कहते हैं कि सिखा जे तो मेरे ना प्यार करदा ना ते मैं भी तेरे ना बहुत प्यार करदा है। किन्ना प्यार करदा है? फरमाउंदे हन सतगुरु, नहीं दद सार पिता पतामा पर पतामा सुजन कुटुंब सुत बंद तना प्राता है। महाराज कहंदे मेरा माता पिता दे नाल प्यार है नहीं गा, पिता दे पिता नाल भी प्यार है नहीं दद सार पिता पतामा पर पतामा सुजन कुटुंब सुत बंद तना प्राता है। नहीं ननसार माता पर माता बर्द माता मामू मामी मासी मोसा बिबद पखियाता है। महाराज कहने नहीं ससुरार सास सौरा सारो सारी। महाराज कहने मेरा सास सौरा नाम ही प्यार है नहीं ससुरार सास सौरा सारो सारी। नहीं पर तीसर जात के न दाता है, असन बसन कान ताम कहूं मैं ना देखिए कियत। जैसे गुरसिख साध संगत को नाता है। महाराज कहंदे जिन्ना मेरे सिख ना मन मेरा गुरु दे सिख नाल प्यार है ना, मैनु होर किसे चीज दा प्यार है जेड़ा ए आउंदा नहीं। आओ आपां ढाडी सिंघां पासों दुपहर दे दीवान विच संग्राम दे नाल संबंधित खालसा पंथ महाराज ने पंथ है जेड़ा ये प्रगट किया संग्राम दा पवित्र दिहाड़े दे उते। इहदे नाल संबंध पहला तो भी संग्राम ना सी। कई विद्वान तो आखदे अजे साडा संग्रामा सुणन नाल ते पूर्णमासिया नाल कोई संबंध नहीं, पर सतगुरु ने गुरु अमरदास महाराज पातशाह ने कहने ए संग्राम दा पवित्र दिहाड़ा जेड़ा मनाउणा इस वक्त शुरू कीता सी वी घट तो घट सिख है जेड़े उन्हां जिन्हां तो नहीं आ जांदा उह संग्राम दे पवित्र दिहाड़े उत्ते तां आ जाण। ते इक खालसे दा जन्म दिन बौली साहब दा कार जदों टुटे है उस वेले वी कहने संग्राम दा पवित्र दिहाड़ा सीगा। गुरु नानो नानक साहब महाराज पातशाह जदों पहली उदासी उते तुरे हन उस दिन भी संग्राम दा पवित्र दिहाड़ा सी। महाराजा रणजीत सिंह नूं कहंदे ने जदों तिलक लगा उस दिन भी संग्राम दा पवित्र दिहाड़ा सी। संग्राम नाल साडा संबंध है जिहड़ा होर बहुत सारा हैगा। आओ आपां ढाडी सिंघां पासों सुण लगे आ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पातशाह विसाखी वाला दिन 1699 ईस्वी हिजरी सन 1128 से सम्मत 1756 से नानक शाही सम्मत 230 से जदों महाराज 33 साल की उम्र होई है। 23 साल गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के शहीदी नु हो गए। 93 साल गुरु अर्जन साहब महाराज पातशाह के शहीदी नु हो गए। उस दिन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह तख्त उत्ते खड़ोते हैं। सारिया संगतां नु संबोधन करते हुए महाराज की कह लगे है संगतां नु सुनो ढाडी जत्था क्यों बयान करता है।

संजोग किमी पान आवा फर्क मने मेरे ते उन्दे बिच बड़ा फर्क जान उरा तू पूरा एक अधूरा है एक पूरा है। कल भी एक लाइन आई तुम गौहर अत गहर गंभीरा तू फिर हम बहुरिया राम ते अगली लाइन सी तुम वडे वडे वट ऊंचे हाँ इतनी कलाहुरिया राम। मैं बहुत छोटी तू बहुत बड़ा है, मैं बहुत नीवी हाँ तू बहुत उच्चा है, मेल किवें होवे? मेल तो कितों रहा तैनू मापने लिए भी तो मेरा हाथ जाना चाहिए ना, तैनू नापने लिए मेरा हाथ ते जाना चाहिए ना, मेरी पहुंच ते होनी चाहिए ना। ख्याल करियो किसी नु नापना होवे तां फीता ते उन्ना लंबा होना ही चाहिए ना, वो हाथ ते उत्थों तक पहुंचने ही चाहिए ने, तदी नाप सकेगा। लो आ एक प्रॉब्लम बने, नापन लई सारे तैयार ने, हगे बहुत नीवे ने, पहुंच पैदा नहीं करी। बस लगातार कुछ दिनों तो एक सब्जेक्ट गुरु समझा रहे हैं, आज एक नमिक ढंग नाल फिर यही ख्याल नु अगे तुरदे ने, आखते हैं

कह कह के अंत नहीं आऊंगा। किन्निया का कुत्ता आखा किस किस जबान गल आखा, कई कोट नवतन नाम ध्यावे, नानक करते का अंत ना पावे। सिफतां बहुतियां कहन नाल अंत नहीं आ रहा। उन्हां सिफतां विच कहिंदे ने करने एक केंद्री लफज है, करने एक केंद्री लफज है, ते अज करने दा एक वखरा स्वरूप दे रहे, क्योंकि मनुख दे करने जड़े ने ना उन्दे कई रूप ने। मनुख बोलदा है वह भी करना है, मनुख सुनदा है वह भी उन्दे करने विच आउंदा है। रहन सहन की कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी नूं कुछ दे रहे हैं, ये सारा कुछ करने विच है। इत्थे बस नहीं, सोच रहे हैं, ये भी एक करना है। करन दे वक वक रूप में कुछ बैरूनी ने दसदे ने, कुछ नहीं दसदे। मनुख जदों सोच रहा हुंदा है ना उदों भी बिजी हुंदा है। जे करने वाले किसी दूसरे की मुदाखलत इंटरफेयर नहीं चाहता तो मैं कुछ कर रहा अजे रुक जा, पर ख्याल करो जो कुछ सोच रहा हुंदा है उदों भी किसी की मुदाखलत नहीं चाहता। मैनू ना बुला, मैं सोच रहा। गुरु कहते ने मेरा रब भी कुछ कर रहा है, वेला नहीं। कभी अजीब गल है, मैं एक बार स्थिति सी, रब वड्डा दृष्टि है, रब दृष्टि है ते वड्डा दृष्टि है। अनंत कारज दी सेट विच एक गल आई, दृष्टि साडी निगाह विच उह हुंदा जिंदा परिवार होवे, जिंदा कारोबार होवे, जिंदे बच्चे संतान हो, जिन्हों अपने परिवार का फिक्र भी हो, उन्होंने दृष्टि आखने। जरा यह सब कुछ त्याग जाए जिंदा ना परिवार होवे, ना कारोबार होवे, ना किसी की फिक्र चिंता हो, जंगलों में चला जाए, उन्होंने असं योगी आखने, उदासी आखने। जे इसे नुकता निगाह नाल ही फैसला होंगे तो गुरु कहते हैं रब फिर योगी नहीं, रब उदासी नहीं, वो तो गृहस्थी है। गृहस्थ में तू बड़ो बड़ा वाला गृहस्थी है। तो मैं उसकी चीज देखो, सारा संसार सारा जीव जंत उनकी संतान है, सब को मात पिता, फिर प्रतिपालक भी, जिमें मां बाप जिमें पिता अपने परिवार की प्रतिपालना करने का जिम्मेवार होंगे, रब भी है, सब को मात पिता प्रतिपालक। इतने बस नहीं, एडे वे परिवार का जिम्मेवार है, तो फिर एडे वे परिवार को बसने लिए तो उन्हें इन्ना वड्डा घर बनाना ही सी, इसे भी संसार बना दिता। यह घर बार है उनका, यह जग सच्चे की है कोठड़ी उनका घर है, सच्चे का विचवास उनके विच रहिंदा। इसलिए वो परिवार वाला भी होया, वो घर बार वाला भी होया। मैं किसी से एक ख्याल करो, कोई ना समझो कि रब नू चिंता कोई नहीं, रब नू चिंता भी है, परिवार वाला भी होया, वड्डे परिवार वाला होया। इसलिए गुरु ने आख दिता, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है जिन्हें पैदा किया पिता है। ये संसार पिता अपनी जिम्मेवारी का एहसास करता है, सोच रहा है मैं परिवार को किवें पालना है, किवें संभालना है। तो रब कोई ऐसा गैर जिम्मेवार पिता जो अपना अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता? नहीं, बहुत जिम्मेवार है। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग,
ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਕਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਕਦੇ ਉਹ ਆਲਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਕੋਲ ਆਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਹੁੰਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਉਨੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਜੋ ਰੱਬ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸੋਚ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਕੰਮਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਦਮੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ, ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਲੈ ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਨੇ ਦੇਖ,

जो कुछ कर दिया है ते दिन रात कर दिया है उनका अंत पा लेगा समझ लेगा किथे किथे समझेगा तेनू जिथों तक कोई दिसदा है उथों तक ही करने समझ सकेगा उनके देन दे खजाने हाथ भी एने वड्डे ने कि धन्ने नूं इह गल आखनी पई कि पाखान कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नहीं देन दा तरीका है किसे को पुत्र किसे गुनाह नाल जेल चला जाए मां कल्पनियां बना के बैठी है तरसदी है पुत्र को किवें पहचावां अंदर नहीं जा सकती नहीं जा सकती अपनी मर्जी दा भोजन तू रोज अंदर नहीं पहुंचा हालत चार दीवारी बिछती है पछताना है प्रभु पिता उनकी संतान पत्थर के अंदर बैठी है जीव अंदर बैठा है कोई रास्ता नहीं पहुंचे देने दे वसीले ने देने दे साधन ने कह लगे तू पहुंचा के बखा पाखण कीत गुप्त हो रहता ताचो मार्ग नहीं उसे कोई रास्ता नहीं पहुंचाने ना बाहर आके खा सकता है ना अंदर उन्हें कोई खुराक पहुंचती ना उसे खेती बाड़ी है कि उतों के भरा दाणी चुग ले पर कह लगे कह धन्ना पूर्णताहू को मात्रे जी डराइयो भलिया डर क्यों भय क्यों तेनू भरोसा क्यों नहीं कि उस मालिक की तू संतान है देख वो पखान कीट जेड़ा पत्थर का कीड़ा पत्थर विच बैठा है वह भी विश्वास करके बैठा है जिन्हें मैनू पैदा किया देगा पत्थर के कीड़े को विश्वास है तू क्यों कर रहे हैं तेनू तो यो चिंता खाई जाती है कल नू कितों खावगा बस इतों मिलती है सहज अवस्था इतों मिलता विश्वास भरोसा एक इन्नी वड्डी शक्ति है सिख इसे लिए अरदास विच रोज मंग रहे हैं दिशा दान भरोसा दान एक ख्याल करो भरोसा एक इन्नी वड्डी शक्ति है इन्ना वड्डा गुण है जिहड़ा भरोसे वाला मनुख है वह चोर नहीं हो सकता गुना कल कोई भी नहीं कर सकता वो करप्ट नहीं हो सकता क्योंकि से भरोसे पर खड़ोता है उन्हें तो फिक्र ही कोई नहीं कल का कल का फिक्र उसके होंगे जिन्हों भरोसा ना हो गुरु कहते तेरे नाल पत्थर का कीड़ा चंगा उन्हें देन से किड़ा विश्वास है जिन्हें पैदा किया देना है गुरु कहन लगे कह धन्ना पूर्णताहू को मात्रे जी डराई डर ना भरोसा रख विश्वास रख उस पर उन्हू देन दा हर वसीला आउंदा है जिथे तेनू कोई मदद ना पहुंचा सके उथे भी वह मदद दिंदा है उन्हू देन हार ही नहीं देन देन की शक्ति के साधन भी मौजूद ने इसलिए तू उनके देन के तरीके नू भी नहीं पछाण सकिया हुण तक दस भला पत्थर के कीड़े नू पत्थर विचों किवें पहुंचांदा है साधन मुहैया कर रहा है खूनी जल में टंक इस बाहर पंख खीर तन नाही बच्चे बाहर ने ब्रेतर च नहीं आई है अंडे तो कछू कुमी बैठी है पानी बिच ना उथे पंख ने उनके कोल के उड़के उनके कोल आ जाने ना उथे दुध है दस किवें पहुंचता है कह लगे ओ भलिया तेनू ये गल समझ नहीं पवेगी कि मालिक हर थावें पहुंच पैदा कर रहा है उनके कोल देन दे वसीले ने पर यह गल वक्री है तू नहीं जानता किवें पहुंचा रहा है कुमी दे बच्चियां नू कूज दे बच्चियां नू उड़ उड़ आवे सह को किस पाछे बचरे छरिया तिन कमन खिलावे कमन चुगावे देन ना अंत और मेरा ये नहीं कि उनके कोल दात दात बहुत ही है नहीं कि खजाने वड्डे ने खजाने देन दा दिल भी है ते खजाने देन दा वसीला भी है जिहड़ा हर किसी कोल नहीं जिथे हर किसी की पहुंच नहीं उथे मेरे रब

हाँ एक गल बखरी क्योंकि तेरी पहुंच नहीं इसलिए तू उन्हें अंदाजा लगा लेना कि खौरे वह भी मेरी कीती हुई अरदास दे मेरे लफ्जा दे मोहताज है आखांगा ताई सुनेगा नहीं तू अंदर चितम के देख और शक्ति पैदा कर अंदर का चितविया भी जान जाए घट घट के अंतर की जान घट घट के

घट घट के अंतर की जान तुम भले बुरे की पीर पहचान अंदर दी सब कुछ जान ले बल्कि कई बार बाहरलियां गल्लां नहीं सुनदा अंदर दियां सुनदा है। उसके पातशाह जी ने इसी भी आख्या ना कहने लगे जिन्ना अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुबर सियाने राम राजे जे ओ बारों भुल चुप बोल दे हरे हर पाने वो तो अंदर दिया सुन गया ते दूजे पासे आख दिता कोई गावे रागी नादी बेदी बा भांत कर नहीं हर हर भीजे राम राजे क्यों जिन्ना अंतर कपट विकार है। अंदर की गल दुनिया नहीं बुझ सकती मेरे अंदर की ये दुनिया नहीं जान सकती रब जान सकता है उनके कोल सुनन शक्ति एडी वड्डी है वो बाहरली नहीं अंदर की गल सुनता जड़ी तेरी पहुंच तो बाहर है इसलिए तू उनकी सुनन शक्ति का की अंदाजा लगा सकना है।

लो ऐसे फिर रुकना है, जो करनी जिन्नी है ना, जिन्नी करनी है वो किसी फैसले पे विचार से आधारित होती है। मैं कल की किसी विचार ही कल का विहार बन गए। कोई भी मनुख काम करता है पहला विचार है, तो रब कोई बिना विचारे काम थोड़ो करी जाता है, ये गल वक्री है। उनकी विचार असी नहीं जानते, हर चीज का कोई फैसला करना पैदा है। मंत्र लफज जिहड़ा है ना, ये अंदरली विचार का है, फैसले का। यह लफज कई थां ते बाणी विच आया है। पैलाब के संबंध में भी यह गल आखी गई है, दुष्ट सभा मेल मंत्र पकाया। दुष्टां दी, बुरियां दी, लखां दी, गुनाहगारां दी सभा बैठी, इकत्र होए, सारे ने मिलके एक फैसला किया, मंत्र पकाया, सलाह की, विचार की। लो मंत्र दा अर्थ है, हर काम विचार ही हुंदा है, फैसला करके। मैं करने करने के नाल विचार का संबंध है, जेड़ा करने विचार भी होना हुंदा है उनकी कोई दिशा नहीं हुंदी। रब के करने भी विचार अधिक है, बकायदा मंत्र पकाउंदा है। सिर्फ फर्क इन्ना है, उत्थे सभा लगदी है, दूजिया को सलाह ली जाती है, क्योंकि अपनी विचार से भी भरोसा नहीं हुंदा। रब नूं अपनी विचार से इन्ना विश्वास से भरोसा है, वह दूजे को सलाह नहीं देता। लो उनके करने में ही अंतर है, सो करे अपन रूप पढ़ने, सो करे जे किसे रजाए, जो उनकी रजा होती है। उन्हें ना मेरे को पूछना है कि दस मैं की करा, ना थोड़े को पूछना है की करा। आप जिंदे नाल सलाह करिए उनके नाल अपनी विचार सांझे करने पैंदे ने, इसलिए उन्हें पता लग जाता है भी ये चाहता है, मैं ये चाहना, अब विचार सांझे कर दी। दुनिया अंदर विचार की दुनिया में असं जो किसी नाल कोई सलाह करनी हो, अपने मन की गल भी आखने, दूजे के मन की गल भी सुनने, कोई सलाह करने, उनके की होंगे तो अपने मन की गल जाहिर करनी पैंती, दूजे को पता लग जाता है ये की चाहता है। हम रब किसी सलाह करता नहीं, सो करे ये किसे रजाए, ना किसी को सलाह लैन की उन्होंने लोड़ है। उनका नतीजा यह निकलता है कि रब के अंदर का जिहड़ा मंत हुंदा है ना, विचार से फैसला हुंदा है, वह किसी को पता ही नहीं लगता। इसलिए कोई जानता ही नहीं रब के अंदर की विचार।

संपय देखना अर्थी है विपद देखना साबत सिट की लड़ सी उन्हें साबत लाती रोड़े करने की लड़ सी रोड़े कर पर असि आखे जाना रोड़े ना भेजी बनाने वाले ने सृजनहार जे लोड़ पई उन्हें एक साबत ला दी जे उन्हें महसूस किया क्योंकि उनका मंत उनकी विचार उनकी सलाह अंदर की असि नहीं ना जानते इसलिए परेशान जो उन्हें रोड़े की लड़ पी उन्हें इन्नी कीमत नाल खरीदी हुई एक मिनट नहीं लाया रोड़ा कर गुरु ने ख्याल दिता कह लगे है सहज अवस्था उसे पछाणना ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਇਉਂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

कहत कबीरा कुल नहीं चेतया, बिख्या स्यों लपटाना गौड़ी। जीवत मरै मरै फुन जीव है, ऐसे सुन समाया, अंजन माहे निरंजन रही है, बहुड़ ना पव जल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बलोई, गुरमत मनुआ अस्थिर रखो, इन बिद अमृत पियोई है राव। गुर कै बाण बजर कल से दी, प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी ब्रह्म चूका, नेचल शिव कर वासा। तिन बिन बाणे तनख चढ़ाई है, इह जग बेदिया पाई, दह दस बूढ़ी पवन चलावे, डोरी डोर रही लिवलाई। उन मन मनुआ सुन सुमाना, दुबदा दुरमत भागी, कहो कबीर अन पौ एक देखिया, राम नाम लिव लागी। गौड़ी बैरागण ते पदे उलटत, पवन चकर खट भेदे, सुरत सुन अनरागी, आवे न जाई मरे न जीवे, तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल्प पई अभरै, नाथर था बेगाना राव। निवरै दूर दूर फुन निवरै, जिन जैसा कर मानया, अलौती का जैसे पया बरेडा, जिन पिया तिन जानया। तेरी निर्गुण कथा काहे स्यों कही है, ऐसा कोई बवेकी, कहो कबीर जिन किया पलीता, जिन दिया पलीता, तिन तैसी चल देखी। गौड़ी जह पावस सिंध धूप नहीं सहिया, तेह उत्पत भर लो नाही, जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै, सुन समाद दूत नाही। सहज की अकथ कथा है निरारी, अतुल ना चढ़ अतुल नहीं चढ़ै, जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना पारी राव। अर्ध उर्ध दो तह नाही, रात दिन सतह नाही, जल नहीं पवन पावक फुनता नाही, सतगुर तहा सुमाही। अगमा गोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लही है, कहो कबीर बल जाऊं गुर अपने, सतसंगत मिल रही है गौड़ी। पाप पुन रोय बैल बसाही, पवन पूंजी परगासो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन बिद टांड बसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बन जारा राव। काम क्रोध दोय पहे जगाती, मानत रंग बटवारा, पंच तात मिल दानन बेरह, टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बन आई, काटी चढ़त बैल कथा का, चलो गोन छिटकाई। गौड़ी पंच पदा पेव कड़ै दिन चार है, साहुर डै जाना, अंधा लोक न जाणई, मूर्ख ए आना, कहो डडिया बाधै तन खड़ी, पाहू कर आई मुकलाऊ आई राव। ओहो जे दिसै खूहड़ी, कौन लाज बहारी, लाज घड़ी संटू टूट पड़ी, उठ चली बनहारी। साहिब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, ता सुहागण जानी आए गुर शब्द विचारे। किरत की बांधी सब फिरै, देखो बिचारी, एसनो क्या आखिए, क्या करे बिचारी। भई निराशी उठ चली, चित बंद न तीरा, हर की चरणी लाग रहो, भज शरण कबीरा गौड़ी। जोगी कहें जोग बल मीठा, अवर न दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक शब्दी, ए कहें बिद पाई। हर बिन परम पुलाने, अंदा जा पै जाऊं आप छुटकावन, ते बांधे बहु फंदा राऊं। जय ते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हमदाते, एह कहें बड़ हमही। जिस हैं बुझाए सोई बुझै, बिन गोर बिन बुझै क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूका, इन बिद मान कलही है। तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है, कहो कबीर गूंगा गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही है। राग गौड़ी पूर्वी कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
जह कछ अहां तहां किछ नाहीं, पंच तत तह नाहीं, एड़ा पिंगला सुख मन बंदे ए अवगुण कत जाही।

ना कहे समझाई राव। जह बर पंड पिंड तह नाही रचनहार तह नाही जोड़नहारो सदा अतीता कही है किस माही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी तोटै जब लग होए बिनासी का कोठा कुर का को सेवक को काहू कह जासी।

सदा अविनाशी गौड़ी सुरत सिमरत दो कन्नी मुंदा परमित बाहर चिंथा सुन गुफा मैं आसुन बैसुन कल्प विवर्जित पंथा मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मरत न सोग बेहोगी रहाउ खंड ब्रह्मांड मैं सिंघी मेरा बटुआ जग सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी दृष्ण त्रिपल पलटी है छूटै हुए पसारी मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी थिर भई तंती तूट सनाही अनहद किंगुरी बाजी सुन मन मगन भये हैं पूरे माया डोल न लागी कहो कबीर दा कहो पुन रप जन्म नहीं मेल लय मे खेल गयो बैरागी गौड़ी गज नाभ गज दास गज इक्कीस पुरियां एक तनाई साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लघु अधिकाई गई बुनावन हार बुनावन माहो घर छोड़ियां जाए जल जलाहु राहु गजी न मिनियां तोल न तुलिया पाचन सिर अडाई जाओ कर पाचन बेगन पावै चगर कर मग कर आई जन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कत आई छूटे कुंडे पिंगे पुरिया चलो जलाहु रिसाई छोशी नली तंत नहीं निकसै नतर रही और जाई छोड़ पसार इहां रहो बपरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एक कामिली किंबा हुए महोए जित घटना मना उपजय फूट मरे जन सोए साबुल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे राउ साध मिले सद पाई है के जोग के भोग दुह मिल कार्य उपज।